आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
11: श्रोतागण नमस्कार, सुप्रभात। यह कार्यक्रम आपन दी, आपन देखभाल, जेकर करेली रउआ सभी सबरी से इंतजार। अरे इंतजार कहे न रही, राउर रेडियो दोस्त दीपाली जी रोज लेके आवेली रउआ स्वास्थ्य और सौंदर्य के चमकावे खातिर कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो चली आज के कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल की शुरुआत कही जाओ, जे में आज हम बताएं चिरचिटा यानी अपमार्ग के बारे में। दोस्त लोग, अपमार्ग के पौधा खेत में घास के साथ प्रायः पावल जाला, ई शुष्क स्थान पर पैदा होला। ई पौधा लगभग 2 से 4 फुट ऊंचा होला। एकर 2 किस्म पावल जाला, लाल और सफेद। लाल रंग के अपमार्ग के डंठल लाल और ओई पर लाल रंग के दाग होला। जबकि सफेद अपमार्ग के डंठल और पत्ता हरा रंग के होला, जे पर सफेद भूरा रंग के दाग होला। एकर बीज कांटा के समान नुकीला होला। तो दोस्त लोग, चले जानल जाओ अपमार्ग यानी चिरचिटा के गुण के बारे में। अपमार्ग के प्रकृति गर्म होला, जौन पीड़ा के दूर करेला। ई रुचिकारक, दस्त लागे वाला, विपाक में कड़वा, तीखा, अग्नि के दीपन करे वाला, विष दूर करे वाला, ज्वर हरे वाला। और कृमि नाशक भूख के नियंत्रण में रखे वाला, रक्त के शोधन करे वाला, गर्भधारण में सहायक और आसानी से प्रसव करावे वाला होला। यूनानी तिब्ब में एकर कामोदीपक, धातु परिवर्धक, मूत्र लागे वाला और प्रथम श्रेणी के ठंडा मानल गईल बा। जड़ की राख में पोटाश अधिक मात्रा में पाए जाए के कारण ई क्षार युक्त दवा के महत्वपूर्ण घटक है, जेकर प्रयोग अम्ल नाश खातिर कई जाला। एकर बीज और सुखल बूटी पंसारी के दुकान पर आसानी से मिल जाला। एकर जड़ की राख और पत्ता में अनेक तत्व पावल जाला, परंतु जड़ की राख में अपेक्षाकृत तत्व अधिक होला। जैसे इसमें 30% पोटाश के क्षार, 7% सूरज क्षार, 13% चूना, 2% गंधक और नमक तथा 4% लोहा पावल जाला। जानल जाओ चिरचिटा यानी अपमार्ग की रोगोपचार के बारे में। गर्भाधान और संतान प्राप्ति खातिर यदि अपमार्ग की जड़ के साफ करके ओकर रस 5 ग्राम की मात्रा में मासिक धर्म समाप्त होके के बाद 21 दिन तक लगातार सेवन कर जाए तो गर्भ ठहर जाए। के रूप में अपमार्ग के ताजा पत्ता के रस 10 ग्राम यानी 2 चम्मच के 200 ग्राम दूध के साथ मासिक धर्म समाप्त होके के बाद सेवन कई जाए तो गर्भ ठहरे की संभावना बलवती हो जाए। आसान दर्द विहीन और निरापद प्रसव खातिर यदि गर्भवती महिला के प्रसव के पहले बहुत अधिक दर्द होके और प्रसव होके में देर हो रहा होके तो ओके कटी प्रदेश में अपमार्ग के जड़ समेत उखाड़ के बांधे से प्रसव आसानी से जल्दी और बिना दर्द हो जाए। परंतु बच्चा पैदा करे के तुरंत बाद जड़ के ओई समय हटा दी, वरना गर्भाशय भी बाहर निकल पड़ी। दूसर विधि है एकर कि पुष्य नक्षत्र या रविवार के दिन जड़ समेत उखाड़ल गईल अपमार्ग के जड़ काला कपड़ा में लपेट के गर्भवती महिला के गला में बांधे से भी प्रसव शीघ्र और आसानी से हो जाला। पतन रोके और स्तंभन बढ़ावे खातिर अपमार्ग के जड़ के उखाड़ के धोली, फिर एकर चूर्ण बना ली। आ ई चूर्ण ठंडा दूध के साथ रोजाना 10 ग्राम की मात्रा में कुछ समय तक लगातार सेवन करते रहे से लाभ हुई। अधिक और शीघ्र प्रभाव खातिर दूध में 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला ली। स्वप्न दोष रोके खातिर अपमार्ग के जड़ के चूर्ण और मिश्री बराबर मात्रा में मिला के रोजाना 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 से 4 बार सेवन करे से स्वप्न दोष समाप्त हो जाए। तिली के बढ़ल यानी अपमार्ग के जड़ के चूर्ण 15 से 25 ग्राम दिन में 2 बार लस्सी या दही के साथ 3 से 4 सप्ताह तक नियमित रूप से सेवन करे से तिल्ली के आकार सामान्य हो जाए और सूजन कम हो जाए। खांसी दूर करे खातिर अपमार्ग बूटी के भस्म तैयार करके ओके 4 गुना पानी में भिंगा के रात के रख दी। आ ई पानी के भाव पैदा होके तक उबाली, उबाले के बाद एके छान ली। एकर मात्र मात्रा एक चौथाई से आधा चम्मच रोजाना 2 से 3 बार सेवन करें तो प्रायः सब प्रकार की खांसी में लाभ हो सकेला। चर्म रोग होके पे अपमार्ग के पत्ता के बांधे से तीखा औजार यानी चक्कू ब्लेड शीशा आदि द्वारा होके वाला घाव भी ठीक हो जाए। यदि अपमार्ग के पत्ता घाव पर बांधल जाए तो घाव सूख जाए। अल्सर और मस्सा खातिर एकर जड़ के राख के हड़ताल में मिला के मरहम तैयार करी और प्रभावित जगह पर लगाएं। गुर्दा रोग के कारण होखे वाला सूजन में जब गुर्दा सामान्य रूप से काम ना करे तो कई बार हाथ पाँव मुंह आदि पर सूजन आ जाला। तो ई रोग से निवृत्ति खातिर 60 ग्राम अपमार्ग के पत्ता के 150 ग्राम पानी में 20 से 30 मिनट उबाल के काढ़ा तैयार करी। ई काढ़ा के ठंडा करके छलनी से छान ली। दिन में 2 से 3 बार ई काढ़ा के 30 से 60 ग्राम मात्रा लेवे से सूजन मिट जाई। विष दंत में अपमार्ग के पत्ता के पानी में पीस के लेप तैयार करी। तैयार करके उस स्थान पर लगाई जहां कीड़ा मकोड़ा मक्खी मकड़ी या कोनो अन्य जहरीला जानवर कटले होके तो ऐसे विष दंत खत्म हो जाए। दस्त पेचिश पेट दर्द बवासीर और पेट के अन्य रोग में अपमार्ग के पत्ता के चूर्ण बना के ओकर काढ़ा तैयार करके 1 से 3 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 से 4 बार उसके मिश्री या शहद मिला के सेवन करें। शरीर के पुष्टि खातिर अपमार्ग के बीज के तवा पर धीमा आंच पर भून के ओकर चूर्ण बना ली। आई में बराबर मात्रा में मिश्री मिला के 10 ग्राम रोजाना प्राय सांगे दूध के साथ यदि नियमित रूप से सेवन कर जाए तो शरीर पुष्टि हो जाए। भूख मोटापा और वजन कम करे खातिर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करे के अभ्यस्त होला जौना कारण उ लोग के शरीर के वजन बढ़े लगेला परिणाम स्वरूप उ मोटा होके लगेला। सब लक्षण पर काबू पावे खातिर अपमार्ग के खीर बना के रोजाना सेवन करे के चाहिए। ऐसे शरीर में जमा होकर अतिरिक्त चर्बी घटे लगी। कमजोर दांत और दांत में दर्द मुंह से दुर्गंध आवल के शिकायत दूर करे खातिर अपमार्ग के फूल के मंजरी के पीस के ऐसे दांत के मालिश करी। पीड़ा होके तो अपमार्ग के पत्ता के रस वेदना में दांत पर लगाई। दांत के बदबू दूर करे और दांत के मजबूत करे खातिर रोजाना अपमार्ग के जड़ या तना के दातुन करी। इसे अन्य दांत रोग भी दूर हो जाए। मलेरिया ज्वर से बचाव खातिर जे दिन मलेरिया ज्वर फैले के आशंका होके उ दिन मलेरिया से बचाव खातिर अपमार्ग के पत्ता और काली मिर्च के समान मात्रा में लेके पीस ली। और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के मटर के आकार की गोली बना ली। यदि मलेरिया फैले के आशंका होके या मलेरिया फैल रहल होके तो नियमित रूप से 2 से 4 दिन तक एक एक गोली भोजन के बाद ली। गंजापन में अपमार्ग के पत्ता के जलावे के बाद सरसों के तेल में मसल ली ता ए प्रकार मरहम तैयार हो जाए। यदि ये मरहम की गंजा वाला जगह पर रोजाना लगावल जाए तो गंजापन की जगह नया बाल उग सकेला। अब घड़ी के सुई कर रहल बा इशारा कि हमली रउआ से जाए के विदा। ता रउआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
15: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
16: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
14: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
14: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
16: कॉल करें 87894 18744।
17: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
18: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
14: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
16: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
16: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
16: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
16: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
14: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
16: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
19: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चोंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

विलाप करती सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

सीता की खोज में भटकते श्री राम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्री राम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु वहां पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL

0: चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर, पेट्रोल पंप।

0: के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 या 9198।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555 94 93
6: और 90 97 61 60 02।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब
9: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राज्य के सभी 551 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के भी सभी 14 प्रखंडों में भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। सभी विद्यालयों में उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उत्साह पूर्वक देखा। प्रखंड के सेमरा स्थित सरस्वती विद्या निकेतन में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। माझा के आदर्श विद्यालय में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और कुचायकोट में आयोजित कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे शामिल हुए। जिले के प्रत्येक सरस्वती विद्या निकेतन में कक्षा 9 में कुल 40 विद्यार्थियों का नामांकन राष्ट्रीय आय एवं मेधा आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से किया गया है। इन विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। थावे के सेमरा स्थित आदर्श विद्यालय में जिला पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय स्थापित करने की पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आदर्श विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं स्वयं को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में विकसित करें तथा अपने प्रखंड के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा, रोल मॉडल और मार्गदर्शक बने। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरस्वती विद्या निकेतन केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालय में ललित कला, संगीत, खेलकूद तथा अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाएगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान विशंभरपुर बाजार से वाहन जांच करते हुए चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अल्ताफ राजा, पिता साकिर अली, ग्राम हरपुर, थाना बड़हरिया, जिला सिवान का निवासी है। वाहन के कागजात मांगने पर उसने बहाना बनाया और भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने इसे पकड़ लिया और मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को थाने लेकर गई, जहां पूछताछ के बाद आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिल के संदर्भ में जानकारी दी। पुलिस अब इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है। गोपालगंज शहर में इस्कॉन मंदिर के नेतृत्व में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कमला राय कॉलेज से निकली इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने भगवान श्री के रथ यात्रा को रस्से से खींचते हुए पूरे शहर का भ्रमण कराया। इस दौरान लगातार श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयकारे लगाते रहे। जय श्री राम जय श्री कृष्णा के उद्घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। हालांकि आज मौसम खराब था, रह रहकर हल्की फुल्की बारिश भी आ रही थी, परंतु श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हो रहा था और लोग पूरे भक्ति आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान श्री के रथ यात्रा को लेकर शहर में भ्रमण करते हुए शहर को भक्तिमय बना दिए। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने कहा कि यह रथ यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी इस रथ यात्रा को भव्य तरीके से निकाला गया और भक्तों का जिस तरह से उत्साह भगवान के प्रति देखा जा रहा है, यह आने वाले भविष्य में और भी भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन करेगा। गोपालगंज शहर में सदर हॉस्पिटल के सामने एक निजी अस्पताल में 21 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्थिति बिगड़ता हुआ देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर जाते समय रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। परिजन निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर थे। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव के रहने वाले दिलशाद अहमद की पुत्री थी, जो पिछले करीब एक सप्ताह से बीमार थी और यहां अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और गोरखपुर ले जाते समय बच्ची की मौत हो गई। दुबई में 10 वर्ष की सजा काट रहे एक युवक वसीम अकरम को आखिरकार सरकार के प्रयासों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि आज दुबई से जैसे ही वसीम अकरम अपने घर लौटा तो परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई महीनों की बेबसी, इंतजार और दुआओं के बाद बेटे की घर वापसी से परिवार की आंखों में आंसू छलक गए। वतन लौटते ही वसीम ने सबसे पहले गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, अपने हाथों से मिठाई खिलाई और कहा कि यह सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज और देश के लिए खुशी का पल है। रोजगार की तलाश में थामे प्रखंड के इंदरवा रफी गांव से दुबई गए वसीम अकरम ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह वहां की जेल में पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को दुबई पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। आरोप था कि ईरान अमेरिका तनाव के दौरान उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र का वीडियो बना लिया। मामला अदालत तक पहुंचा और इसे 10 साल की सजा हो गई। जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप के रातों की नींद उड़ गई और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या वसीम कभी वापस लौट पाएगा। परिवार के लोग प्रत्येक दिन आंसू भरे आंखों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। गोपालगंज के सांसद और सरकार से इसकी गुहार लगाई गई, जिसके बाद सांसद महोदय ने भी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और उनके प्रयासों से विदेश मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से समझा और भारतीय दूतावास तथा दुबई प्रशासन के बीच लगातार समन्वय हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और आखिरकार वह दिन आया और वसीम की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। उसे सुरक्षित वापस भारत भेजा गया। जैसे ही घर वसीम पहुंचा तो परिवार के लोगों में ईद और होली की खुशी एक साथ मिल गई। पूरे परिवार के लोगों ने वसीम का जोरदार तरीके से स्वागत किया और सरकार तथा गोपालगंज के सांसद का आभार व्यक्त किया। नारायण सर्वोदय प्लस टू विद्यालय सदौआ बरौली में जब सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का मान्यता मिला तो बताया जा रहा है कि वहां भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने बैंड बाजे के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और भव्य तरीके से विद्यालय का उद्घाटन किया गया। कटिहार थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह भोरे के कल्याणपुर रिखई बारी का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चनावे में कैदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग एवं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कैदियों को प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसका लाभ किसको मिल सकता है, इसका लाभ नहीं लेने पर इसकी हानियां, CRPC की धारा 265A, कंपाउंडिंग ऑफ डिफेंसेस आदि विषय पर कानूनी बातें कैदियों को समझाई। मुचका गांव थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार यादव पिता हरे राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह उचका गांव के दही भत्ता का रहने वाला बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 37 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक कार भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनमें आनंद कुमार पिता हरि प्रसाद जो नंदलाल कपूर थाना हैदरगंज जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा आकाश कुमार पिता जीलू साकिन लक्षीपुर गरौली थाना हैदरगंज जिला अयोध्या का निवासी है। इनके पास से कार और शराब मिली है। दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव के पास बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक लघु शंका कर रहा था, इसी दौरान बाइक पर बैठे तीन बदमाशों ने इस पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त आश मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। यह विजयपुर के मठिया गांव के बशीर खान का पुत्र है। पुलिस ने इसके घर से ही इसकी गिरफ्तारी की। विजयपुर पुलिस ने बलात्कार के भी मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम करण कुमार है। यह विजयपुर के समहुती गाँव के उपेंद्र शर्मा का पुत्र बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 प्रखंडों में शुरू हुआ सरस्वती विद्या निकेतन, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निजी अस्पताल में हुई मासूम बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, 10 वर्ष की सजा को मात देकर दुबई से लौटा वसीम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
17: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
18: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को जो रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोगों का प्रेम, श्रद्धा, आदर से हम अभिभूत हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपका संदेश कई माध्यमों से हम तक पहुंच रहा है। इससे प्रतीत होता है कि हमारा संवाद दो तरफा हो रहा है। आप लोगों का प्रेम जो है हमें प्रोत्साहित करता है और यह नहीं लगता है कि अब जो है 6 दशक पार करने के बाद भी हम किसी युवा से कम ऊर्जावान है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया था कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक टीम जो है लगातार रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर रेडियस में गांव, शहर में घूमकर यह सर्वे कर रहा है कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम जो हम प्रसारित करते हैं उसको लोग कितना सुनते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम जो हम प्रसारित करते हैं उसे कितने लोग सुनते हैं। समय समय पर भारत सरकार के या किसी संस्थान के माध्यम से यह सर्वे होते रहता है। अभी तक जो हमें पता चला है कोन्हवा, बसडिल्ला, कररिया, जागीरी टोला, डुमरिया कई गांवों में यह टीम गई, लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया। इसके लिए हम रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से धन्यवाद देते हैं। चूंकि सर्वेकर्ता यह जानना चाहते हैं कि रेडियो रिमझिम को 90.4 की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस रेडियो के माध्यम से कितने लोगों का मनोरंजन हो रहा है और हमारे सुनने वाले सभी लोग अभी तक के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर काफी सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। रेडियो रिमझिम के अलावा बिहार के और रेडियो स्टेशन का भी सर्वे चल रहा है, लेकिन इस दौर में हर साल की भांति इस साल भी रेडियो रिमझिम को प्रथम आने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप जो हमें ऐप से, रेडियो से, इंटरनेट से या किसी अन्य यंत्रों से सुनते हैं और सही सही बातें आए हुए प्रतिनिधि को बताते हैं तो हमारा मनोबल जो है ऊंचा हो जाता है। कई हमारी बहनें, बेटियां खुलकर अपनी बातों को आए हुए प्रतिनिधि के सामने बता रही हैं। उसका कुछ वीडियो फोटो रेडियो रिमझिम को भी प्राप्त हुआ है। हमारी पूरी टीम जो भी रेडियो रिमझिम में सेवा दे रहे हैं सब लोग हर्षित हैं, खुश हैं। जब व्यक्ति लगातार काम करता है, संडे मंडे होलीडे कोई भी छुट्टी नहीं, लगातार सेवाएं हम देते हैं, यहाँ तक कि छठ पूजा बकरीद ईद उस दिन भी हमारा प्रसारण चलते रहता है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सबका सकारात्मक सहयोग से ही रेडियो रिमझिम अपने कार्यों को बेहतर करता है। केवल मेरे कुछ करने से नहीं होता है, हमारे टीम के लोगों का मेहनत तभी सवारत होता है जब आप लोग उस सर्वेकर्ता को सही और सटीक बातें बताते हैं। उन लोगों ने बता रहा था कि कई जगह हमने रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्तियों से बात किया तो उनके एकांकी जीवन में रेडियो ही उनका एक साथी है। कई लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई और कई लोगों ने कहा कि सुबह 5 बजे से और लगातार हम लोग सुनते हैं। तो यह जो है एक सर्वे टीम का संक्षिप्त विवरण हमें प्राप्त हुआ है। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं रेडियो रिमझिम से, ऐप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, उन्हें बताते चले सेहत सही लाभ कई एक ऐसा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसमें नाटक के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता हम लोग करते हैं। जैसे अभी बरसात का समय आ गया, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया फैलने लगता है, तो इससे हम कैसे बचे इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उनसे हम भेंट वार्ता करते हैं और आप सबको सुनाते हैं। इसके अलावा जो रेडियो रिमझिम के आरजे हैं वह नाटक के माध्यम से इसे प्रसारित करते हैं और बीच बीच में भी हर बीमारी के बारे में हम बताते रहते हैं, जो भी हमारे पास जानकारी सही और सटीक प्राप्त होती है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए अनमोल होता है। हम कितना ही कमाते जाएं, यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वह कमाई का कोई भी लाभ हमारा शरीर नहीं उठा सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि 24 घंटे में 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक अपने ऊपर खर्च कीजिए और 23 घंटा अपने घर परिवार जमीन जायदाद पर खर्च कीजिए। यदि आप 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर पर खर्च करते हैं तो वह जो है आपकी आयु जो है सीधे बढ़ा देगी। आज भी हम देखते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विशेष करके बुद्धिजीवी समाज, शहरों में टहलते रहते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई जिम जाता है, यानी अपने शरीर में समय खर्च करते हैं। हम लोग गांव देहात में हैं, कम से कम टहलना चाहिए, शारीरिक काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि शुगर बीपी कई तरह की बीमारियां जो है लोगों को लग रही है। इसका मुख्य कारण मेरे समझ से, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मेरे समझ से मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग शारीरिक श्रम यानी शरीर से काम कम करते हैं जिसके वजह से यह बीमारियां फैलती है। आज से करीब 16 साल पहले बहुत बड़े एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पटना में थे और मेरा शरीर जो है धीरे धीरे फ्रीज हो रहा था, जम रहा था, तो हमने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जब तक आप फिजिकल वर्क शारीरिक श्रम नहीं कीजिएगा तो बॉडी का यह नियम है कि जिस अंग का उपयोग हम लोग कम करेंगे वह धीरे धीरे जो है फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तब हमें यह ज्ञात हुआ और हम व्यक्तिगत रूप से कोशिश करते हैं 30 से 60 मिनट के अंदर अपने शरीर पर खर्च करें। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम, आपके विचारों पर, आपके सुझावों पर यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी कामना है। यदि हम समय से खाना खाते हैं, समय से बिस्तर छोड़ते हैं, समय से बिस्तर पर जाते हैं, तो हमारा शरीर और जीवन जो है ठीक रहेगा। अभी हम देखे हैं कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लगभग 90% रोपनी हो चुका है। नहर में भी लबालब पानी आया हुआ है। जहां पानी की कमी है वहां किसी न किसी माध्यम से लोग पानी को अपने खेतों में पहुंचा रहे हैं। इस साल जो है अच्छी बारिश भी हुई है, समय से जो है रोपनी भी चल रहा है। ईश्वर की असीम कृपा है। कहा जाता है कि जहाँ के अन्नदाता, जहाँ के किसान समृद्ध रहेंगे, खुश रहेंगे, वहाँ का समाज भी खुश रहेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, बातें तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन मेरे साथ बैठे हैं सोनू जी, जो आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों का उत्तर आपका संदेश मिला कार्यक्रम में दूंगा।
2: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है अमरजीत राम जी का, नवका सिमरा कुचाईपुर से लिखे हुए हैं। रेडियो रिमझिम को मैं पिछले 10 वर्षों से सुनता हूं। हमें गाने के अलावा हेलो क्यूज कंटेस्ट, हालचाल बहुत अच्छा लगता है। जितना भी YouTube पर समाचार सुनाया जाता है उस पर मुझे यकीन नहीं होता है, लेकिन रेडियो रिमझिम का हालचाल गोपालगंज काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम परिवार को धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय अमरजीत जी, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह के संदेश जो है रेडियो रिमझिम टीम का मनोबल बढ़ाता है, प्रोत्साहन बढ़ाता है और मन में एक अलौकिक खुशी का अनुभूति होता है। आप हमारे अति पुराने श्रोताओं में से एक हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी प्रसारण करें, जो भी हालचाल गोपालगंज प्रसारित करें, वह तथ्यों पर आधारित हो, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन करती रहे। वैसे सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त सूचना को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। इसलिए आपको हालचाल गोपालगंज काफी अच्छा लगता है। TRP बढ़ाने के लिए, वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए रेडियो रिमझिम कभी ध्यान नहीं दिया। वह सत्य के साथ चलता है, चाहे परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतवर्ष में हजारों की संख्या में रेडियो हैं, बिहार में भी 10-12 रेडियो चैनल हैं, इसके अलावा आकाशवाणी है, कमर्शियल रेडियो है, लेकिन रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही 2-3 नियमों पर निरंतर और सतत प्रयास करता है कि इसमें त्रुटि न हो। हम किसी भी शुरू में भी नशीली पदार्थों का विज्ञापन नहीं किए हैं। जिस समय मद निषेध विभाग द्वारा शराबबंदी की घोषणा नहीं की गई थी, उसके 6 साल पहले से ही रेडियो रिमझिम ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। मेरी प्राथमिकता जो है पहले जनहित के लिए होता है। हम जो भी प्रसारण करते हैं इसमें जनहित कितना है इसको नाप तौल कर हम प्रसारित करते हैं। दूसरी बात, कहीं भी अश्लील गीतों का प्रसारण हम लोग नहीं करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यह दो तीन मूल बातों पर रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण करते रहा है। साथ में हमारे यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का शुरुआत हमने किया, जो लगातार 5 जनवरी 2009 से आज जो है 2026 का जुलाई महीना हो गया चलता है और प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे इसका रिकॉर्डिंग होता है और उसका प्रसारण प्रत्येक शनिवार के शाम को और रविवार के सुबह में किया जाता है। आज भी बहुत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इसमें भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया है कि जब कोई बच्चा पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो पीटी और मेंस के बाद इंटरव्यू अनिवार्य है और इंटरव्यू का जो दायरा होता है वह अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले आकाश, जमीन, विज्ञान, भौतिकी किसी भी विषय पर आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है इसी बात को ध्यान में रख कर हम प्रसारित करते हैं। आज जो है कई निजी विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम चलने लगा है, लेकिन रेडियो रिमझिम तो खुला मंच है, इसमें किसी भी उम्र वर्ग लिंग के लोग जो है भाग ले सकते हैं और प्रत्येक साल 5 जनवरी को जो भी विजयी होता है उसे रेडियो रिमझिम एक छोटा सा पारितोषिक देकर उस बच्चे को सम्मानित करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियो रिमझिम में ऑनलाइन और रिकॉर्डेड दोनों कार्यक्रम चलता है और अपने जिला के अलावा दूसरे जगह से भी सैकड़ों के संख्या में लोग जुड़ते हैं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले कि हर कार्यक्रम का एक समय निर्धारित होता है। जो आरजे होते हैं वह भी चाहते हैं कि जितनी फरमाइश आई है सबको हम पूरा करें, लेकिन उस परिधि के बाहर न हम जा सकते हैं न हमारे आरजे जा सकते हैं। जितना भी समय जिस कार्यक्रम के लिए निर्धारित है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसी में उस कार्यक्रम को करना है। साथ में जो हमारे ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, विज्ञापन दाता, उस पर भी हम नज़र रखते हैं कि जो समय उन्हें दिया गया है उस समय पर उनका विज्ञापन जरूर चले। इसलिए रेडियो रिमझिम अपने सतत परिश्रम से और आम जनता के सहयोग से अपने स्थापना काल से और आज 2026 हो गया, कहीं भी कोई टीआरपी में गिरावट नहीं हुआ, लगातार हमारे सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अजहरुद्दीन अंसारी थावे बेदू टोला से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा सलाम। 365 दिन और 2400 घंटा ऐप से प्रसारण होता है, जिसमें अपने मन मुताबिक गाना मैं सुनता हूँ। मेरे परिवार के लोग विदेश में भी रहते हैं, वे लोग भी सुनते हैं। लोग अपने जिले की सूचना देश विदेश के लोगों तक भी पहुँचता है। मेरा कहना है कि कव्वाली का एक विशेष प्रोग्राम भी रखा जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, थावे बेदू टोला के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता अपने दिल की बातें, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में पहुंचाते हैं। आजकल तो हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ आ गया है, और जो व्यक्ति समय के साथ अपने को बदलते चले वही सर्वाइव करता है, यानी ठीक ठाक रहता है। जैसे प्रकृति का नियम है कि जाड़ा में हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं, और बरसात में भी हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं। तो समय के साथ जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो शरीर भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उसी तरह रेडियो रिमझिम समय के साथ अपने में कई बदलाव किए, जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत रेडियो रिमझिम में किया गया। आज जो है आप अपने मन पसंद गीतों को सुनते हैं, मन पसंद कार्यक्रमों को सुनते हैं, और जब जब मौका मिलता है ऐप के माध्यम से अच्छे और पुराने गीतों को सुनते हैं। यह हमारा प्रयास रहता है कि जब व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, चिंतन में रहता है, तो रेडियो को चालू करता है कि कम से कम तनाव कम हो जाए। दुख तकलीफ कोई हर नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा कम तो जरूर कर सकता है। कहा जाता है कि मन की पीड़ा यदि लगातार मन में रखिएगा तो वह दर्द बढ़ते जाता है, और मन की पीड़ा को कई लोगों में जब हम वितरण कर देते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। आपने कहा कव्वाली का स्पेशल कार्यक्रम, तो आदरणीय श्रोता बंधु प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है, 5 बजे शाम से 7 बजे तक हेलो माई चॉइस चलता है, और सोमवार से शुक्रवार तक SMS फरमाइश जो ऑनलाइन चलता है। तो इन सब कार्यक्रमों में आप भाग ले सकते हैं, अपने मन पसंद गीतों को सुन सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्पेशल कार्यक्रम हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गीतों को, संगीतों को हम प्रसारित करते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है कि अभी फरमाइश किए अभी पूरा हो गया, और ऑफलाइन में आप दोपहर 11 बजे रिकॉर्डिंग कराए और शाम को सुन लिए। तो यह सेवाएं लगातार रेडियो रिमझिम लगातार दे रही है, जिसका लाभ आप ले रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी सुनना चाहते हैं तो आप हमें बताएं। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे यहाँ हालचाल गोपालगंज, प्रादेशिक समाचार, राष्ट्रीय समाचार सब प्रसारित होता है, ताकि कम समय में आप पूरी सूचना आप तक पहुँच जाए। एक जिम्मेवार रेडियो संचालक होने के नाते रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम पर निगरानी रहती है कि हम जो बोल रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वह जनहित की हो, इस बात पर हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है बढ़ड़िया नवलपुर से नितेश कुमार जी का, लिखे हुए हैं, हमारे गांव में बुजुर्ग और युवा रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, काश हमारे सिवान में भी इसी तरह का प्रसारण होता, सिवान हालचाल भी चलता तो काफी अच्छा होता। रात में एक से बढ़कर एक गाना का प्रसारण होता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को और बढ़रिया जिला सिवान के सभी नागरिकों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे ज़िले के बाहर से आपका संदेश मिला में संदेश आता है। रेडियो रिमझिम का काम करने का भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक क्षेत्र है, और क्षेत्र से बाहर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐप के आ जाने से आज पूरे दुनिया में रेडियो रिमझिम को सुना जाता है। कहीं अफसोस करने की जरूरत नहीं है, रेडियो रिमझिम आपका है। आप लोगों के भरपूर प्यार और सहयोग से ही लगातार लंबे समय से सफल प्रसारण हो रहा है। आप ध्यान दिए होंगे, चाहे कोई पर्व त्योहार आए, रेडियो रिमझिम का प्रसारण जारी रहता है। कभी कोई तकनीकी व्यवधान आ जाने से कुछ समय के लिए रुकावट आता है, फिर भी अपना प्रसारण जारी रखता है। कहीं अफसोस नहीं करना है जीवन में। ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है और समय के साथ जो कमी रह जाता है वह पूरा कर देता है। जीवन में यदि हम सकारात्मक हैं तो जीवन जो है सरल है। यदि हम नेगेटिव हैं तो हमें हर जगह नेगेटिव दिखाई देगा। एक बार एक गुरु जी ने अपने 3 शिष्यों को सड़क पर भेजा और कहा कि आप लोग 1 किलोमीटर चलने के बाद बताइए आपने क्या क्या देखा। तो एक शिष्य ने जवाब दिया कि मैं सड़क के किनारे चल रहा था तो बरसात के दिनों में केवल पानी और गड्ढा दिखाई दे रहा था। दूसरे शिष्य ने कहा कि मैं जब सड़क पर चल रहा था तो एक झोपड़ी दिखाई दिया और उसमें खाना पक रहा था। और तीसरे शिष्य ने जवाब दिया कि मैं जब सड़क पर जा रहा था तो एक झोपड़ी में देखा कि एक बच्चा जो है किताब लेकर दिया के प्रकाश में पढ़ाई कर रहा है। कहानी यह हमें सिखाती है कि हम क्या देखना चाहते हैं वही चीज हमें दिखाई देता है। जीवन में सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन सरल रहेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आप रेडियो रिमझिम का भरपूर आनंद लीजिए और हम लोग अपने सामर्थ्य और अपने परिधि में रहते हुए आपकी सेवाएं करते रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि वर्षा का पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा जो है किसी सीमा में नहीं रहता है। यह सबके लिए है और आवाज़ जो है उसी तरह है। आवाज़ भी किसी सीमा में नहीं रहता है, तो जो जहां मिला है उसका भरपूर आनंद लीजिए और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
2: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है मीरगंज पश्चिम टोला से पंचानंद कुशवाहा जी का। मैं रेडियो रिमझिम को अपने गाड़ी में सुनता हूं। ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को, मीरगंज शहर निवासियों को तथा आपके पश्चिमी टोला के सभी नागरिकों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है, जिले के प्रत्येक हिस्से से कुछ न कुछ संदेश आता है। यदि रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम आपको बेहतर लगते हैं तो यह हमारी उपलब्धि है। यदि कहीं कोई नकारात्मक बातें हैं तो उसे भी लिखिए, हम सुलझाएंगे। कहा जाता है कि मानव जो है अधूरा होता है। हम प्रतिदिन गलतियां करते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक गलती को दोबारा न करें। और यह मानव का चरित्र भी होना चाहिए कि जीवन में यदि हम खुद गलती करें और खुद सुधार करें तो ईश्वर ने इतना समय नहीं दिया है जीवन काल को कि व्यक्ति बेहतर बन सकता है। जीवन में कुछ अपने गलतियों से और कोई दूसरे व्यक्ति के गलती से जो शिक्षा मिलता है यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर गुणात्मक सुधार होगा, यह मेरा मानना है। तो आपको हमारा कार्यक्रम बेहतर लगता है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि अगले संदेश में विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में हमें सूचित कीजिएगा। नमस्कार
2: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है नीलम देवी जी सांसा मूसा बाजार से भेजी है। रेडियो रिमझिम को बहुत बहुत धन्यवाद। योर वॉइस योर च्वाइस, एसएमएस फरमाइश और हेलो माय च्वाइस में एक से बढ़कर एक गाना सुनाया जाता है। हेलो क्यूज कंटेस्ट का नंबर भी बताया जाए तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय नीलम जी, आपके पूरे परिवार को, सासा मूसा ग्राम वासियों को, बाजार वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम को सुनती हैं और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपना बातों को रखती हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मेरा भी मानना है कि रेडियो रिमझिम का जो प्रसारण हो रहा है वह बेहतर हो, इसके लिए आप जैसे आदरणीय श्रोताओं का मंतव्य हम लेते रहते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम दो तरफा संवाद है। सप्ताह भर हमने जो किया है, कहाँ तक बेहतर किया है, कौन सी कमी रह गई है, इन सब बातों पर रेडियो रिमझिम में विवेचना होता है, विश्लेषण होता है और फिर जब सोमवार से अगला सप्ताह शुरू होता है तो जो कमियां रह गई है उसे सुधारने का हम प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार बताया है, मेरे जीवन का अनुभव और युवा साथियों का ऊर्जा, इन दोनों का सम्मिश्रण के माध्यम से रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि इतने

0: है। आदरणीय श्रोता बंधु, जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हैं, जो हमारे आरजे हैं, वह सभी युवा हैं। कई इसमें अविवाहित हैं और कई लोग जो है ऊर्जावान हैं। वह जब कार्यक्रम करते हैं तो सभी श्रोताओं को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम ऑनलाइन कार्यक्रम या ऑफलाइन कार्यक्रम में त्रुटि हो। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि या कमी रहती है तो आपका संदेश मिला में आप लिखें, हम उसमें सुधार करेंगे। और सुधारने का क्रम निरंतर और लगातार चलता है। हेलो माई च्वाइस है, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट है, यह सब अच्छे कार्यक्रम हैं। इसमें बातचीत करना, एक दूसरे को समझना, हंसी मजाक करना, यह रेडियो का एक हिस्सा होता है। हमने शुरू में ही बताया कि रेडियो रिमझिम आपके तकलीफों को हरने का काम, कम करने का काम करता है। जो हमारे आरजे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठते हैं, उन्हें यह पता है कि कोई व्यक्ति अपने दिल की बात जब शेयर करता है, बात करता है, वही करता है जहां अपनापन होता है, जहां अपना लगता है। कहीं कोई बात नहीं कह सकता है, लेकिन हमारे कई बेटियां, बहनें अपने दिल की बातें आरजे के साथ शेयर करती हैं, कई परेशानियों को भी बताती हैं। अच्छा लगता है और कार्यक्रम की रोचकता बढ़ता है। अंत में आपने कहा था कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में का नंबर बताया जाए, तो हम इस नंबर को दो बार बोलेंगे, एक बार हिंदी में, एक बार अंग्रेजी में। इसका नंबर है 800-299-4921 और दूसरा बार 800-299-4921। इस नंबर पर रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रिकॉर्डिंग चलता है। आप इसमें बातें कर सकते हैं। यदि रिकॉर्डिंग में लेट हो रहा है तो रेडियो रिमझिम के कार्यालय के नंबर पर आप फोन करके बता सकते हैं। वैसे रेडियो रिमझिम का जो नंबर है वह रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर लिखा हुआ है। आप जब भी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलेंगे, रेडियो रिमझिम का फेसबुक, रेडियो रिमझिम का यूट्यूब, रेडियो रिमझिम का हाल चाल गोपालगंज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यह सब उपलब्ध है। हमारे जमाने में यह सब नहीं था, लेकिन समय के साथ हम भी चलते हैं और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर सभी कार्यक्रमों का मोबाइल नंबर, कब रिकॉर्डिंग होता है, कितने बजे कार्यक्रम चलता है, एक पोस्टर बनाकर हम लोग डाल दिए हैं, तो आप सब वहां से भी नोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अनीता कुमारी। सर नमस्कार, मुझे आपका संदेश मिला, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमारे परिवार के बड़े लोग काफी ध्यान से सुनते हैं, इसमें अपना सुझाव साझा करते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है और मैं अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेती हूँ। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय अनीता जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हमें भी काफी अच्छा लगता है। हमें नहीं लगता है कि रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में बैठकर हम बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि किसी गांव देहात में खटिया पर बैठे हैं, और दो चार आदमी के बीच

0: हम अपने बातों को रखते हैं, उनके भी बातों को सुनते हैं, यह काफी अच्छा और रोचक होता है। यह कार्यक्रम जो है सीधे हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनका अनुभव लेकर हम कुछ सीखते हैं। हमें नहीं लगता है कि हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, हमें लगता है कि जिस तरह समुद्र है और समुद्र का एक बूंद पानी हमें मिला है, लेकिन पूरा समुद्र अभी उसी तरह दिखाई देता है। और हम वैसे भाग्यशाली लोगों में से हैं कि इतने शानदार और जानदार श्रोताओं के बीच रेडियो रिमझिम परिवार को कार्य करने का एक मौका मिला है। हम इस बात के लेके काफी प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। और जो हमारे श्रोता हैं हर उम्र वर्ग के हैं, कोई काफी बुजुर्ग हो गया है जिनका आयु 90 वर्ष का है, उनके जीवन का शानदार अनुभव लेकर इस कार्यक्रम में पिरोते हैं। कुछ हमारे युवा साथी हैं जिनका उम्र 18, 20, 22, 23, जो पूरा ऊर्जा से भरे हुए हैं, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनका भी अनुभव हम लेते हैं। और यह जो अनुभव है आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम प्रसारित करते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी विश्वविद्यालय से हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन सही और बड़ा विश्वविद्यालय जो है समाज होता है। कभी आप टोटो वाले भाई से अर्थात ई रिक्शा वाले भाई से बात कीजिए, उनका जीवन का अनुभव अलग होगा। किसी विद्वान अधिवक्ता से बात कीजिए तो उनके पास भी शानदार अनुभव होता है। तो किसी सरकारी पदाधिकारी से बात कीजिए, किसान से बात कीजिए, जो हमारे देश की सेनाएं हैं उसमें कार्य करने वाले जवानों से बात कीजिए, हमारी बेटियों के समान जो गोपालगंज जिले में महिला पुलिस आई है उनके जीवन का अनुभव लीजिए। यह सारा अनुभव जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा दार्शनिक बना देता है, वैभवशाली बना देता है। कहा जाता है कि धन आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन विद्वता ज्ञान और अनुभव जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। मेरा मानना है कि जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है, स्त्रियों का आदर होता है, वह परिवार जो है सबसे बेहतर होता है। कई परिवार हमने देखा है कि लोग लंबे समय से अच्छे अच्छे पदों पर कार्य करने के बाद रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उनके बच्चे भी रिटायर हो गए और पोता पोती पर पोता तक हो गए हैं, लेकिन वह हमेशा हंसमुख और अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उस परिवार में संस्कार है, स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान है, और जहाँ यह सब होता है वहाँ सीधे लक्ष्मी और सरस्वती आकर विराजमान हो जाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने अत्यंत आदरणीय श्रोताओं से यही कहेंगे कि जीवन का जो अनुभव लेना है अपने परिवार के बुजुर्गों से लीजिए। वह जो है 60 साल, 70 साल, 80 साल के उम्र के हुए वह बेकार नहीं है, घर के टूटे फूटे फर्नीचर के समान नहीं है। उनका दाढ़ी भले बढ़ा हो, बाल कम कटा हो, लेकिन जीवन का जो लंबा अनुभव वे रखते हैं यदि आपके पास आ गया तो आप हीरे के समान हो जाएंगे। मान लिया जाए आपका उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है और आपके पिताजी का उम्र 60 साल है, यदि आप उनका अनुभव ले लिए तो आपका उम्र जो है समझिए 85 साल के बुजुर्ग जैसा अनुभव आपको हो जाएगा। लेकिन आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, समय नहीं है, लेकिन यह समय जो है कभी आने वाला भी नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन कर्म को करना है, इसके साथ परिवार को भी समय देना है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन को खुशहाल चाहता है उसे समय देना ही होगा। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में। घड़ी का भी इशारा है कि हमें अब स्टूडियो से निकलना चाहिए, लेकिन चलते चलते यही कहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उम्र चाहे कोई भी हो। हम कई लोगों को देखते हैं, चेहरा उम्र जो है बहुत कम है, और भुड़की जैसा उनका तून निकल गया, गाल पचक गया। केवल खाते मत जाइए, उसे पचाते भी रहिए, और समय के साथ यह जो प्राकृत है वह भी बदल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कई बार कहे हैं कि हम लोग जब बचपन में थे, आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले, तो हमारे दादा को, पिताजी को न शुगर हुआ, न बीपी हुआ, न दांत टूटा, न आँख से कम दिखाई देता था, और हम लोगों को सब कुछ हो गया। इसका कारण यही है कि वे लोग प्राकृति के साथ जुड़े रहते थे, वे हमेशा समय के साथ चलते थे। सूरज उगने से पहले वे लोग जग जाते थे, और सूरज डूबने के बाद भोजन भी नहीं करते थे। लेकिन आज का सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल जो है, हमें रात रात भर जगाता है और दिन दिन भर सुलाता है। इसके प्रति आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आदरणीय श्रोता बंधु, घड़ी का जो है अब अंतिम इशारा आ गया है कि हमें चलना चाहिए, तो आप लोग रेडियो रिमझिम परिवार को आशीर्वाद देने का कृपा करते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है, रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है, सुनो दिल से। नमस्कार।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-5-12-11-001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8867 3।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8009294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम। जी रघुआ कैसे? रघुआ ठीक बानी नो?
1: हाँ बोले।
13: तो नाम बता दी और कहाँ से है?
1: नाम अरदीन अहमद, डुमरिया से बोलता नहीं, उसका गाँव डुमरिया।
13: अच्छा।
1: हाँ, सब सुना?
13: और सब बढ़िया बात। खाना वाना हो गयी?
1: हाँ, खाना पीना हो गयी बा। रेडियो बजाओ तेने बोल के।
13: चलिए बढ़िया बात।
1: हमारी है कार सरकार दे।
13: तो बता दी कौन गाना सुनेगा बारे बाके?
1: हाँ, हमारे गाना सुना दे। मैं कभी कभी न बन जाऊँ तेरे प्यार में कविता, तेरे प्यार ही प्यार।
13: और ये गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहते नहीं?
1: हाँ, गाना तो सबसे पहले
13: जी
1: बार रेम जेम के जितना होता लोग है सब सुने।
13: तो चलिए ठीक बार, और गाना प्ले करते नहीं?
1: हाँ ठीक बा।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार हिंसापुर।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी हैं, लो उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है,
0: बारिश उरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हो रहा है, कल संडे को। जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी।
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले है श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
10: मैम नमस्कार।
11: नमस्कार,
10: कैसे हैं मैम?
11: बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
10: मैं भी ठीक हूँ मैम। बारिश हो रही है ना मैम गोपालगंज में?
11: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
10: इधर तो दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रोया बारिश। मौसम यहाँ का बहुत अच्छी कर दिया है।
11: अभी भी हो रही है बारिश?
10: जी जी जी, कल रात से लगातार बारिश हो रही है।
11: बारिश का मौसम है, एंजॉय करिए।
10: हाँ जी, बारिश तो होनी चाहिए, नहीं तो खेती बाड़ी कैसी होगी मैम?
11: जी बिल्कुल जी। वैसे अपना नाम नहीं बताया। नाम बता दीजिए।
10: बुला गए मैम, मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, कोरिजम्बा जिला देवघर झारखंड से।
11: अच्छा,
10: आज सुना दीजिए मैम, पुराने फिल्म है भीगी पलके फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। उससे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिंग की पूरी टीम को, सोनी जी को और हमारे कुछ फ्रेंड हैं, कृष्ण प्रसाद यादव, मदन कौल, पूरन कौल, कमली कौल, जुगल कौल, राजकुमारी प्रभु कौल, कृष्ण कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
11: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
10: थैंक यू मैम,
11: वेलकम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजिन 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, मायर MP से।
0: क्या हाल चाल है सुनील जी?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे रहे। अभी बारिश निकल गया तो हम सोचे अभी चलो काम करते हैं और काम बचे थोड़ी देर बात कर लेंगे। अभी टाइम है तो अभी फोन लगाते, फोन भी लग गए मैम।
0: बढ़िया, अभी बारिश हो ही रही
1: मैम। जी जी अभी बारिश तो चालू है मैम। वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
0: यहाँ पे भी हवा चल रहा है।
1: जी मैम, तो आज ये फरमाइश फिल्म का आना है और गाने के बोल है वो लड़की याद आती है, ऐसा गाने कुछ बोल है मैम, और सुनवाएंगे कि मैं रेडियो जिन दो लोग होते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: तो चलिए आपका गाना ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नमस्ते।
9: नमस्ते,
10: क्या हाल है?
9: बढ़िया, आप अपना बताइए।
10: मेरा भी बढ़िया है। भारती जी बोल रहे हैं क्या?
9: नहीं भारती नहीं, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
10: मनोरमा
9: जी, आपका नाम?
10: मेरा नाम दिनेश कुमार, चित्र नारायण सिवान जी में पढ़ता है ना। भारती जी नहीं है यार, छुट्टी पे है?
9: नहीं छुट्टी पे नहीं है, उनका आज रिकॉर्डिंग नहीं है ना इसलिए।
10: अच्छा, दूसरा काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो अभी आ गए हैं इसमें क्या?
9: जी
10: छोड़िए, बढ़िया, और सब बताइए।
11: और सब बढ़िया। तो बता दीजिए, मौसम तो सही है, हवा चल रहा है?
10: इधर भी वही हाल है, सुबह से भी लाइट नहीं आया है, हवा तेज है ना।
11: जी जी, वैसे तो इसमें थोड़ा धूप भी निकला हुआ है और हवा भी चल रहा है।
10: गाना बजा दीजिए, थम के बरस मेरे को महकू को घर जाना है।
11: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
10: सबसे पहले आपको, रिद्धिया मैम को, सोनी मैम को, भारती मैम को, और अफसर सर को, डायरेक्टर सर जी को, सोनू सर जी को, और मेरे पूरा भाई लोग सुनने या उन लोगों को भी, और मेरा बहन है छोटी वाली करिश्मा, वो भी सुनेगी। आजकल शो में नहीं जुड़ रही है ना करिश्मा, बोल देती है कि फोन लगा दे तो फोन नहीं लगता। हम बोलते हैं कि आप लगाएगी तभी तो, मान लीजिए इतना सारा कस्टमर है, सब लोग तो फोन करेंगे। ठीक है फिर, और सब बढ़िया है?
11: जी बढ़िया। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
0: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
1: ठीक है, अपना बताइए मैम।
0: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
1: मैम
0: सब खाना वाना हो गया है?
1: ना अभी खाना नहीं हुआ है, सुबह कल उठेंगे तो खाना खाएंगे, अभी आए थे स्कूल से।
0: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: 11th में।
0: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: अच्छी चल रही है।
0: ओके, चलिए बढ़िया। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना
1: है? सुना दीजिए कोको कोला ला छोड़ी खेसारी लाल का।
0: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: जी मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको और आपको पूरा जितने रेडियो रिंगजिम के उतने आदमी को।
0: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगो

0: स्पेशलिटी हॉस्टल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन हिंदी बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
5: सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: मुझे गाना सुनना है।
6: जी बता दीजिए।
5: गाना सुनना है अब आएगा मजा बरसारा, यही गाना सुनना है, बारिश हो रहा है इसी के लिए।
6: अरे वैसे आपका नाम और कहाँ से?
5: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ, गोपालगंज के रहने वाले हैं।
6: अच्छा जी, तो बारिश हो रही है अभी वहाँ?
5: जी बारिश हो रही है।
6: अच्छा,
5: यही गाना सुनना है।
6: फिर से बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
5: मुझे गाना है अब आएगा मजा अब बरसात, यही गाना सुनना है। अंदाज मूवी का है, यही गाना सुनना है। सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको मासूम, कौशल, विनेश, अमरन भाई, अरमान भाई, आयुष भाई, जगदीप भाई, रिंस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, दीप्ती जी, हिना जी, का जी, सज्जा जी, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
6: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
5: थैंक यू मैम।
6: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्ट्रीम जी 90.4 FM में।
0: मैडम चंद्रकिशोर जोपाल बोल रहा हूँ, गुजरात से, सूरत गुजरात से रहने वाला मैं, बिहार का हूँ, दरभंगा जिला का। मैडम गाना सुना दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के और गाने की बोल है दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी।
1: ओके और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है आपको और जो रेडियो टीवी में सुनते हैं सभी श्रोताओं को। ठीक है मैम, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सोने जा रहा था। मैम एक बात पूछना था, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है रात को वो कब प्ले होती है? क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं रात को सुनता हूँ।
1: प्ले होता है शाम 5 बजे,
0: लेकिन रात को भी चलता है 12 बजे, 11 या 12 बजे के बीच कुछ चालू होता है, तो टाइम क्या है इसका रात को?
1: रात को तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी अभी नहीं आई हूँ तो उतना नहीं पता है मुझे,
0: क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ ना, तो मैं रात को आज चालू किया था तो रात को चल रहा था ISO, तो मैं सोचा क्या कि दिन में कॉल लगाऊंगा तो फिर टाइम आपसे पूछ लूंगा कि टाइम कब है इसका रात का।
1: टाइमिंग तो इसका हमको पता है कि 5 से 7 बजे तक बजता है। अब जब आप बोल रहे हैं कि रात को भी बजता है तो शायद उस टाइम भी।
0: हाँ रात को भी बजता है मैम, 1-2 घंटे चलता है रात को भी 12-1 बजे के आसपास। तो अभी तो मैं सोने जा रहा था तो मैं सो जाऊंगा तो इसलिए सुन नहीं पाऊंगा, तो मैं सोचा रात में ही सुनूंगा।
1: जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू सो मच।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महादेव।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
10: यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
12: जी नमस्कार मैडम जी।
13: नमस्कार
12: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
13: जी क्या हाल चाल है आपका?
12: बढ़िया है बहन जी, बरसात हो रही है हमारे इधर, आपके उधर हो रही है क्या बरसात?
13: नहीं इधर तो बारिश नहीं हो रही, बस मौसम बना हुआ है
12: जी। हमारे यहाँ तो रात भर का पानी गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है बहुत जोर शोर से।
13: अच्छा, बारिश का एंजॉय करिए। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
12: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है मजबूर।
13: ओके,
12: और गाने के बोले बाहर भरा पानी और अंदर आग लगी है, जिम जिम भरा था बाहर ये पानी अंदर आग लगी है।
13: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है।
12: जी आपको है, सबसे पहले डेडिकेट, और अपने गोपाल ओझा जी है ककवासा से, और मांगीलाल जी कंदेले, मांगीलाल धाकड़ है गोपाल, और गजराज जी लोधी है। तो दीदी प्रोग्राम कब आएगा
13: ये आपका? प्रोग्राम कल आएगा,
12: आएगा ये
13: शाम को ही आएगा।
12: ठीक है,
13: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, बोल रहे थे गाना सुना।
1: जी बता दीजिए।
0: मेरा नाम
1: जी
0: मेरा नाम हो गया विजय दीवाना, करवा पटना से।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम।
1: अब क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है मैम, हम लोग बीबी अप्रैल ग्रुप में काम कर रहे हैं।
1: जी कैसे चल रहा है काम आपका?
0: ठीक है।
1: अच्छा, तो मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम तो आज बहुत अच्छा है, कल और आज दोनों दिन अच्छा।
1: बारिश हो रही है?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हवा चल रही है ठंडा ठंडा।
1: यहाँ पे भी
0: जी।
1: गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना मैम एक सुनना था पवन सिंह का, सबसे सुपर हिट गाना है लल्ली पॉप लागे लू।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, पवन जी है, वीरेंद्र जी है, मनोज जी है, जितेंद्र जी है, राजू जी है, देवेंद्र जी है, लालदेव जी है, और हमारे पूजा जी है, नेहा जी है, अंकिता जी है।
1: ओके,
0: कितने बजे मिलेगा मैम इस सुन लो?
1: आपको कल मिलेगा सुनने के लिए।
0: कल कितने बजे?
1: 5 बजे, 5 से 7 बजे तक।
0: थैंक यू
1: जी। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: Jab phone gende bajte hai to kehte hai.
4: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम,
5: मैं रेशमा बोल रही हूँ पठानपट से।
6: जी क्या हालचाल है रेशमा जी?
5: ठीक है, आपने बताइए।
6: मेरा भी बढ़िया।
5: आपका तो हो गया मैम?
6: जी, और आपका?
5: हमारा भी हो गया।
6: चलिए बढ़िया है। क्या हो रहा है?
5: खाना बन रहा है।
6: अच्छा, तो बताइए कौन गाना सुनना है आपको?
5: गाना सुनना है दिल में रहने वाला, कभी दिल से नहीं निकलता।
6: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: जी मैम, आपको सुनवाना है और जितना लोग रेडियो सुन रहे सभी किसी का।
6: तो बताइए इधर का मौसम कैसा है?
5: ठीक है मैम, कभी धूप आ रहा है, तेज धूप ऐसा ही हो रहा है, हवा चल रहा है। कल परसों दो दिन बहुत काफी गर्मी था।
6: जी, अभी तो कुछ राहत है।
5: हाँ, अभी कुछ राहत। हम लोग और ज्यादा गर्मी लगता है, कड़का भी घर है ना, बहुत होता है। तबियत ठीक है मैम?
6: जी जी। तो चलिए आपका गाना प्ले कर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगू 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं प्रभु ठाकुर बजरंग बाजार काटे थाना गोपाल गंज से बोल रहा
1: हूँ। ओके, क्या हाल चाल है आपको?
0: ठीक है जी, अपना बताइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं।
0: बारिश हो रही है कि नहीं? अभी
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही उधर।
0: इधर भी बारिश हो रही है, चार दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन लगभग बारिश होते
1: हैं। अच्छा जी, अभी बारिश नहीं ना हो रही है उधर?
0: नहीं नहीं, इधर भी बारिश नहीं है, बहुत हवा तेज है और धूप भी है बहुत।
1: तो है,
0: तो बिजी जा रहा था, उसी समय से आधा घंटा से लगा रहे हैं।
1: जी जी,
0: अभी जाके लगा है।
1: चलिए, अब लग गया ना?
0: हाँ अभी लग गया, लास्ट में जाके लगा है, 15 मिनट और बचा था तो लग गया।
1: और
0: एक सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: और फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन गाने का बोल है, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: हाँ हाँ, तो हमारे दोस्त है, उनके लिए एक छतु कुमार गुप्ता है, टीके राम है, और एक हमारी भाभी है, उनके लिए जो अभी बम्बई में रह रही है, सुनीता जी के लिए मेरी कहते हैं गाने जरूर सुनवाइएगा। ठीक है ना? भारती में बोल रही है ना?
1: नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
0: नहीं नहीं, आप कितना वहाँ?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: मनोरमा
1: जी?
0: नहीं बोल रही है मनोरमा जी, सुनिए भारती ही बोल रही है।
1: आवाज से पता नहीं चल रहा
0: है? आवाज से तो पता चल रहा है, सेम सेम आवाज है आपका, हिंदी नहीं सही है। सही, झूठ बोल रही है, वही बोल रही है भारती?
1: नहीं नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही।
0: तो फिर आपकी मेरे को पहली बात बारी। चलिए ठीक है,
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करे 85070-32042 पे।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
9: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
13: पिक इट अप, पिक इट अप,
14: हेलो,
13: मैं पिक योर फोन अप,
14: हेलो,
13: पिक इट अप, पिक इट अप,
14: हेलो,
13: मैं पिक योर फोन अप,
14: हेलो।
15: जब फोन
16: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
17: नमस्कार मैम।
18: नमस्कार,
17: आप भारती बोल रही हैं?
18: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
17: अच्छा जी मैम, गाना जो ऐसी करते हैं, बोलते हैं कौन दिन को बनाया जाता है?
18: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
17: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार शुक्रवार बस। आप कैसी हैं?
18: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
17: हम भी ठीक है मैम।
18: तब क्या हो रहा है?
17: अभी पूजा से करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो याद हुआ तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ तो सोचे क्या की आप कॉल करें, 2 मिनट बात करें।
18: बढ़िया। वैसे अपना नाम बता दीजिए।
17: मैम मेरे सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
18: और कहाँ से?
17: हजियापुर से है मैम।
18: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए
17: मैम। जो हम साथ साथ में के हैं, मैया जसोदाई रीरा रंगैया।
18: अच्छा हाँ,
17: गाना बजा दीजिए मैम।
18: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
17: सबसे पहले आपको, आज इतना रेडियो म्यूजिक पर सुनते हैं, सभी भाई और बहनों को, सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे
18: जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
17: थैंक यू मैम।
18: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
0: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
0: चलिए अब लग गया ना।
1: हाँ लग गया है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अपना नाम बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम,
1: हाँ
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपसे पहली जगह बात हो रही है ना। मैं रेडियो पर बहुत दिन सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था, टाइम नहीं मिलता है ना।
0: अच्छा, तो फिर गाना बता।
1: सॉन्ग का नाम है छोड़ के ना जाओ या तुझको मैंने ये दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूँ?
0: जी बिल्कुल।
1: मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
0: जी सुनाइए।
1: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दे नतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आँखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या।
0: अच्छा जी,
1: ठीक है सुना दीजिएगा।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी शुक्रिया।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ।

0: खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
5: धन्यवाद, और आपको नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: क्या हाल है?
6: बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं। आज तो करीब करीब 320 बार से ज्यादा ही डायल किए हैं नंबर।
6: अच्छा जी।
5: हाँ, लगातार मेहनत करते करते आखिर में लग ही गया।
6: अब लग गया ना?
5: हाँ
6: जी। तो अपना नाम बता दीजिए और कहाँ पे?
5: अनिल बात है, छोटपुर से।
6: नाम एक बार फिर से बता दीजिए, बात क्लियर नहीं आ रहा।
5: अनिल बात कर रहे हैं, छोटपुर से।
6: अच्छा जी, क्या हाल चाल है अनिल जी?
5: बढ़िया है।
6: क्या हो रहा है?
5: बस काम पे ही हूँ।
6: तो मौसम कैसा है उधर का?
5: मौसम आज थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, बस बादल इधर से उधर जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, हवा चल रही है थोड़ा रही है।
6: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
5: गाना सुना दीजिए। मैंने तैयारियों की मूवी आई थी उसी का, लगा रे रो।
6: ये नहीं,
5: नहीं पुरानी ही फिल्म है, लगभग 2007 की फिल्म है।
6: अच्छा अच्छा, और ये गाना डेडिकेट भी है किसी को?
5: सारे लिस्नर को और साथ ही साथ आप सभी लोगों को, आपकी टीम में जो भी लोग हैं। जी
6: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
5: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
0: विकास कुमार हिंसापुर।
1: ओके, क्या हाल चाल है विकास जी?
0: बढ़िया है जी। भारती?
1: नहीं, भारती नहीं बोल रही हूँ जी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: तो भारती मैम और वो सोनी मैम कहाँ चली गई?
1: वो लोग भी हेलो, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं है ना।
0: अच्छा, उन लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है?
1: मतलब हो रहा है, आज नहीं है ये बोल रहा है।
0: अच्छा, और सब बताइए मैम, क्या हाल चाल है?
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो हवा चल रहा है।
0: बारिश वरिश नहीं हो रहा है?
1: नहीं, बारिश नहीं हो रहा है। और उधर
0: दिल्ली में तो इधर तो कल बारिश हो रहा है। ठंडे को जहाँ धान का फसल लगाना है वहाँ नहीं हो रहा है बारिश। भगवान
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: हम तो गाना सुनना है यार, ये वाला गाना नहीं है, तुझे रब ने बनाया इसलिए, ये वाला गाना।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं श्रोताओं सबको।
1: ओके, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।

0: खेले हम।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमर।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
2: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा,

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस ₹89,815, HF डीलक्स ₹76,275, ग्लैमर X ₹101,354 और X3 125R ₹110,836 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ और पूरे आधा घंटा लेट से आने के लिए माफ़ी चाहेंगे। और भी तो बरसात का समय चल रहा है तो लेट हो ही जाती है, लेट करना कौन चाहता है। और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को कर सकते हैं। और व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज करते हैं तो कॉल का माध्यम है, नंबर है 7277166696 पर कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और आज के शो में हम आपकी फरमाइशों के साथ साथ बात करने वाले हैं सेहत सही लाभ के अंतर्गत। अभी बरसात के मौसम चल रही है तो बरसात में हम अपना सेहत का ख्याल कैसे रखें, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ऐसे तो देर हो ही चुकी है तो बिना देरी किए आज की शो की शुरुआत करेंगे, अपने बक बक को यहीं रोकेंगे। और आप सभी जब तक मैसेज करते हैं तब तक एंजॉय करते हैं एक खूबसूरत सा गाना फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: और रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा सो योर वॉइस योर चॉइस का। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँच चुके हैं, और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लिखने की हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, दीनानाथ यादव है कैसे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। आरजे अमन जी है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि बहुत इंतज़ार करवाया आपने कोई नहीं, इंतज़ार ख़त्म हुआ आप सभी का। मिस्टर कुमार जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, लिख रहे हैं कि और गाने की फरमाइश है बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। संजय यादव जी है दुबई से, फरमाइश के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ बादल मूवी का गाना सुनना है, कोई भी सुना दीजिए, और गाने की फरमाइश के साथ है। दीपक जी जम्मू से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी जी, और कश्मीर से साकिब जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, रंजन कुमार जी पंजाब से जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी हाँ बिल्कुल, आपका एक सप्ताह हो चुका है और आप अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रही है कि छतरी ना कोल बरसात में गाने की फरमाइश सुनना है, तो बिल्कुल प्ले करेंगे। प्रीति रदास जी हैं लकड़ी दरगाह से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी कार्यक्रम की शुरुआत कॉल से कीजिए। ओहो बिल्कुल कोशिश है, और कॉल अगर समय पर पहुंच गया तो मैं कॉल से ही करूंगी। इरशाद जी हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत। विशाल पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि मोस्ट वेलकम है सोनी जी आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अरे किनका दिल हो गया है, नमस्कार प्यारी सोनी जी। और प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिल तो सभी का खो गया है कहीं ना कहीं, और बस ऐसे ही गाना अच्छा लगा प्ले कर दिए। और आगे यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए कॉल से ही आज की शो की शुरुआत करते हैं। कॉल पहुँचा हुआ है, बात करते हैं। हेलो भाई, रेडियो नहीं सुनवाइए, आप अपना नाम बताइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका रेडियो रिमझिम में। और कॉल तो यहाँ पहुँचा हुआ था, लेकिन ये मेरी वॉइस मुझे सुनवा रहे थे, तो चलिए यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। और यहाँ दूसरा कॉल पहुँच चुका है। हेलो हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में, काफ़ी दिनों बाद।
1: अरे थोड़ा काम हो गया था इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या हाल चाल है बताइए।
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हमें लगा कि आप तो हमें भूल गए हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं,
0: ऐसा कोई बात नहीं है ना।
1: ना ना, जब टाइम मिलता है तभी मैं जुड़ जाता हूँ।
0: थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी।
1: बोला जब भी टाइम मिलता है ना वो जुड़ जाता हूँ मैं।
0: चलिए ये तो अच्छा बात है जी, तो अपना परिचय खुद ही दे दीजिए श्रोताओं को।
1: मैं मोहम्मद सिराज हुसैन बात कर रहा हूँ कुशीनगर से
0: जी। और गाना क्या, कौन सा सुनिएगा आज आप?
1: आज गाना मुझे सुनना है, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे का घर।
0: अच्छा, कोई मुझे यूं मिला जैसे बंजारे को घर।
1: हाँ हाँ,
0: और डेडिकेट भी करिएगा
1: आपको और जितने भी लोग सुनने वाले हैं सबको।
0: चलिए काफी खूबसूरत गाना, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम पे, प्ले कर दिया आपका गाना।
1: ओके थैंक यू।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के, एंजॉय।

आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे मोहम्मद सिराज हुसैन जी तमको ही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि हमने बात किया था कि आज की शो की शुरुआत में कि आज हम आपकी फरमाइशों के साथ बात करने वाले हैं कि बरसात में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बरसात में हमेशा आप लोग साफ़ पानी पीजिए, सुरक्षित पानी पीजिए। अगर पानी की शुद्धता पर आपको संदेह हो रहा है तो उसे उबाल कर या फिर फिल्टर करके उसे इस्तेमाल करिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या हुआ सोनी जी, आज हमारा मैसेज भी नहीं पढ़ रही हैं, नाराज़ हैं क्या आप हमसे? बिल्कुल नहीं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। और निजामुद्दीन जी जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और लिख रहे हैं कि सोनी जी गोपालगंज के मौसम के बारे में बताइए, मुझे एक हफ्ता हो गया है। और तो गोपालगंज की मौसम की बात करें तो आज बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है लेकिन मौसम काफ़ी कूल कूल हुआ है, ठंडा और सुहाना मौसम है। और यहाँ मैसेज है, लिखे हैं कि वाह गाना छोड़ दो या फिर गाना सुना दो, कितनी चाहत छुपाए बैठे हैं गाने की फरमाइश के साथ है। लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, कश्मीर से साकिब जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मैम हम भी जुड़ गए हैं, कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और सबीना खातून जुड़ी हुई हैं फ्रॉम दुलदुलिया से, बहुत बहुत स्वागत है, फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अनूप खरवार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्रणाम, का हाल चलवा और आपका सोनी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं। लिख रहे हैं कि तबीयत कैसा है आपका, आपके जिले के निवासी मैं अनूप खरवार हजियापुर गोपालगंज से आज शो में जुड़ गया हूँ, आज मुझे भी गाना सुनना है। बिल्कुल गाना सुनना है, फरमाइश भेज सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं सोनी जी प्रणाम, कहाँ इतना देर हो गया, दिनेश कुमार मिश्रा है दिल्ली से, और कहाँ देर होगा, अभी बरसात का समय है तो रास्ते में ही देर होगा और कहाँ होगा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ लिखते हैं कि बादलों से कह दो जरा सोच समझ कर बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो नहीं नहीं मुकाबला नहीं करिए, याद आए तो भी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैम जी, कैसे हैं आप? और मैं बुद्धि फ्रॉम लुधियाना पंजाब से, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि राधे राधे, मेरा भी एक फरमाइश है, गाना बजा दीजिए। और आपकी जो गाने की फरमाइश से चंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बालाघाट एमपी से। वो गाना हम नहीं प्ले कर सकते हैं, गाने की फरमाइश अगर चेंज कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाह कर भी खामोश रह जाता है, कोई सब कुछ कह कर भी प्यार जताता है, कोई कुछ ना कह कर भी सब बोल जाता है। और मुकेश खरवार जी हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। दिल परदेसी हो गया गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे, जो कि गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है दुबई से संजय यादव जी का, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। इंजॉय करिए संजय जी अपने गाने की फरमाइश को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।

0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: वेलकम बैक रेडियो रमजम 90.4 एफएम पे आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और कॉल भी पहुँच रहे हैं, तो बात करेंगे। चलिए कॉल रिसीव करते हैं, कौन है, कहाँ से, जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम में।
1: ये मैं मोहम्मद वकास बोल रहा हूँ स्कॉटलैंड ग्लासगो से।
0: जी क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज मैंने वो गाना सुनना है, कुछ तो हुआ है फ्रॉम द मूवी, कुछ कुछ होता है,
0: कुछ तो हुआ है,
1: कोई मिल गया गाने का नाम।
0: अच्छा, कुछ कुछ होता है से?
1: हाँ, कुछ कुछ होता है मूवी गाना है, कोई मिल गया। ठीक है।
0: अच्छा, तो गाना प्ले कर दिया आपका।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किए, एंजॉय करिए गाने को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी। गाने की फरमाइश पहुंची है स्कॉटलैंड से, हमारी वोकार जी जुड़े हुए हैं और यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप भी जुड़ चुके हैं तो। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आप लोग बढ़िया बढ़िया गाने जल्दी से काट देते हैं। ऐसा बात नहीं है, मैं सारे गाने प्ले करती हूँ। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है। सगीर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं तेजपुर आसाम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे कि मेरे गाने का बोल वादा ना तोड़ गाने की फरमाइश के साथ है, प्ले कर देंगे। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। मनीष रजाक जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, छतरी ना खोल बरसात में, प्रीति रदास जी की। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

फोर रेडियो रिजम सर आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। हम मैसेज है लिख रहे हैं कि सुन रही हैं और इंजॉय भी कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हम उबानी जी हाँ बिल्कुल रघुआ बानी रघुआ के भी एक बार फिर से स्वागत बाटे। लिख रहे हैं कि लफ्जों को मोतियों की तरह पिरोना कोई आपसे सीखे, बिना देखे ही दिल में उतर जाना कोई आपसे सीखे। आज सोनी जी आप सिर्फ रेडियो पर नहीं बोलते, धड़कनों को कैसे छूते हैं ये हुनर कोई आपसे सीखे। और आपकी शानदार आवाज़ और बेहतरीन वॉइस के लिए छोटा सा नजराना यूँ है, हम सबको इंटरटेन करते रहिए सोनी जी। और मैसेज के साथ हैं विशाल पांडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है और मैं गाने का लिंक भेज दिया हूँ। जी हाँ बिल्कुल निजामत जी, आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेहत सही लाभ के अंतर्गत, आज बरसात से जुड़ी, बरसात में कैसे रहें, तो बरसात के मौसम में मच्छरों की भी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दीजिए। रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करिए और ज़रूरत पड़ने पर पूरा बाजू का कपड़ा पहनने की कोशिश करिए ताकि बरसात में मच्छरों से बचा जा सके। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सॉन्ग में साथ देने के लिए भी थैंक यू। और उमाशंकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। शाकिब जी आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है और आपके गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है हिमाचल प्रदेश से मुकेश करवार जी की। इंजॉय करिए अपने गाने को, दिल परदेसी हो गया रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं हमारे पास, अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल करिए 7277166696 पर। लेकिन कॉल सिर्फ वही लोग करें जो कि व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो रंभा देवी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और धर्मराज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। बनी रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ भी कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। लिख रहे हैं कि हमारा भी मैसेज है, शामिल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। और लिख रहे हैं कि हेलो हाय सोनी जी, एंड रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी दोस्तों को नमस्कार है। मेरी तेज फ्रॉम सिवान से जुड़ गया हूँ सोनी जी, योर वॉइस योर चॉइस प्रोग्राम में हाजिर लगा दीजिए। हम रितेश कुमार फ्रॉम सिवान से बिल्कुल हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, देख रहे हैं कि मेरा भी मैसेज देखिए। जी हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। दुर्गेश जी जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि ओहो सविता देवी जुड़ चुकी हैं लामी चोर चबरिया टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आदमी खिलौना है गाना सुनना चाहती है, टाइटल सॉन्ग, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। जहूर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं क्वेस्ट से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि दिल परदेसी हो गया, फरमाइश करने वाले को धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है। क्या बिल्कुल दिख रहा है आपका भी मैसेज। और निरंजन कुमार जुड़े हुए हैं बतरदे से, बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी, आपका भी फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नैन रिचार्ज पॉइंट सिराजपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है नैनो की रानी, तू नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। और यहाँ शाहबुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ भवेश कुमार जुड़ चुके हैं बैंकट विहार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश है आपकी भी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि राम राम, राजू कुमार सऊदी से लाइव सुन रहे हैं और राजा हिंदुस्तानी का टाइटल सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका, और यहाँ मुस्तफ़ा जी हैं, लिख रहे हैं कि फरमाइश करें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा भी मैसेज शामिल करें। जी हाँ बिल्कुल, हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं, क्या हालचाल है मेरे तरफ से सभी प्यारे लिसनर को, और प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिए आपको, और योर वॉइस योर चॉइस सुनने वाले सभी को नमस्कार सलाम बोल रही हैं। और लिख रहे हैं कि हम भी योर वॉइस योर चॉइस में एंट्री कर चुकी हो। निशा भारती हैं विलेज ओझलिया ऊंचका गांव प्रखंड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना है याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, तो अभी तो दिन है निशा जी। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और डेडिकेट कर रही हैं मुझे और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, भारती जी को, श्रुति जी को, दिव्या जी को, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं गाने की फरमाइश की, तो भैया जी चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

एकरा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गाना नहीं के गढ़ल रहत और जब उनका भी पैसा नहीं के रहत मेरा भी पैसा उनका के कल जानू इमोशनली ब्लैकमेल करत गाना।

आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं भवेश जी, और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी कितना इंतजार करे पड़ी, तो थोड़ा इंतजार तक करे पड़ी, कहे कि यहाँ काफ़ी सारा फरमाइश पहुँचल बा। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गाने का बोल है तुम्हें देखे मेरी आंखें, और गाने की फरमाइश के साथ है सुनील कुशवाहा जी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि शुभम कुशवाहा जुड़े हुए बंजारी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज से सही लाभ के अंतर्गत बरसात में हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, तो यहाँ बरसात में आप अपने हाथों की साफ़ सफाई भी ज़रूर रखिए, क्योंकि बारिश है, कहीं कहीं हर जगह सीलन है, आप इधर उधर टच कर रहे हैं, तो जब भी कुछ भी करिए, खाइए पीजिए, तो एक बार हाथ ज़रूर धोया करिए, और खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत कई बीमारियों से बचा सकती है। बरसात में ये छोटी छोटी आदत बहुत ही बड़ा बचाव होता है। तो चलिए बिना देरी अगली फरमाइश हम यहाँ प्ले करेंगे, और जो अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है बिंदिया बोले क्या बोले, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से और यहाँ इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं ये।
1: सोनी जी नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम और गाना चलाने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दिलीप राम दिल्ली से।
0: और चलिए बिना देरी अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है कितनी चाहत छुपाए बैठे हैं और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका शाकिब जी, जुड़े हुए हैं कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को, प्ले कर दिए हैं।

और यहाँ शाकिब जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिखना थैंक यू सो मच, बहुत टाइम लगा लेकिन आपने लगा दिया गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा गाना भी चला दीजिए अभी। हाँ बिल्कुल, और यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि हमारा भी सॉन्ग है मैम, बिल्कुल याद है मुझे कि आपका भी गाना है और गाने की फरमाइश करने वाले हैं। राज फिल्म से गाना सुनना है, कितना प्यारा है ये चेहरा, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। अपना नाम पता भी मेंशन करिए कि आप कौन है, कहाँ से हो। और यहाँ बैक में जाएंगे तो उपेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9797-06-575।
7: वेलकम बैक, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आप सभी के अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 1:36 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज जो हमारे पास पहुँचे हुए हैं। लाल बाबू सिंह जुड़ चुके हैं नवादा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। विमल जी जुड़ चुकी हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सुनील यादव जी हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी अर्जी, हाँ बिल्कुल आप भी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्ते जी। और सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आप सभी रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं जी, बिल्कुल आपका भी इंतजार खत्म होगा। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है। और यहाँ शमशेर जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और अगली फरमाइश जो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
8: नमस्ते
7: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम से। मैं
8: गाना सुनना है,
7: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
8: तमन्ना खातून, कसरामपुर से।
7: तमन्ना खातून पसरामपुर से।
8: हाँ
7: जी, तो कौन सा गाना सुनना है तमन्ना जी? एक बार और बताइए नाम गाने का। हमरा बात के तू राख ल खोपड़िया में।
8: हाँ।
7: किसके आवाज में है?
8: पता नहीं है।
7: पता नहीं है?
8: नहीं।
7: गाने का नाम तो ये नहीं है। गाना अच्छा है, सुनिए आप। चलिए, प्रमोद प्रेमी की आवाज में नहीं है ना गाना, कि उसी की आवाज में है? चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुन के बताइए कि यही गाना है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमे कॉल की।

94 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंची थी और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ कई सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं और गाने की भी फरमाइश है और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि यहाँ बबलू सिंह जुड़े हुए हैं कमरोहा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, एमडी शदाब जी हैं, एमडी रिजवान जी हैं, एमडी नौसाद जी हैं और अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं बजाजी रोड लालगंज से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि तनी हमरों पर नज़र डाली सोनी जी, जी हैं बिल्कुल, और मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि दिलीप राम भाई को पसंद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सगीर आलम अंसारी जी हैं तेजपुर आसाम से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम कितना खरे नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मुझे लता जी की आवाज़ में रिमझिम गिरे सावन सुनना है, प्लीज़ सुनवा दीजिए और महाराष्ट्र की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, इंजॉय करिए अभी रेडियो रिमझिम को आपके आने की फरमाइश से, तो थोड़ा वेट करिए। और यहाँ गंगा सागर आंध्र प्रदेश से सोनू जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास गाने की फरमाइश है, मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है तुम्हें देखे मेरी आंखें, तो एंजॉय करिए अपने गाने को, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें मेरी क्या खता है।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना है मैयर एमपी से सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश है, लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर गाना है सोनी जी। और मैसेज के साथ हैं शाकिब जी जम्मू कश्मीर से, और यहाँ लिख रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा और वेट करिए और लेट जो हो रहा है आपका खत्म होगा। और आगे यहाँ गाना पहुँचा हुआ है हमारे पास, कितना प्यारा है ये चेहरा। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं नाम है इनका उपेंद्र शर्मा जी। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया है ना जी? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। और लिख रहे हैं, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित जी हैं देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इधर कई सारे मैसेज है, हम पे भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल, आप सभी पे ध्यान है। और यहाँ राजू कुमार जी हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी हम सब गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं उपेंद्र शर्मा जी मुंबई से, और हाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आपको रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं को दिल से गहराइयों से नमस्कार। और आज अफसर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश हम बिना देरी प्ले करने वाले हैं, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है राजा हिंदुस्तानी का टाइटल सॉन्ग, तो इंजॉय करिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, और गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है राजू कुमार जी की सऊदी से।

और यहाँ विशाल पांडे जी हैं, लिख रहे हैं कि कितना प्यारा है चेहरा, मस्त झकास गाना और इंजॉय करिए। कई सारे मैसेज हैं यहाँ, लिख रहे हैं कि ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इंजॉय करिए।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन।

0: गोपालगंज और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट। कॉल करें 85070-32042 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 1:57 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, रुक करेंगे अपना, तो यहाँ कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं खूबसूरत गाना आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, अजय अफसर जी हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो सोनी जी नमस्कार प्रणाम, प्रेम मदेशिया पड़ोना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार जी, कैसी हैं? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आपकी तरफ मौसम कैसा है? हमारे इधर तो रुक रुक के बारिश हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे तरफ भी वैसा ही मौसम है जैसा कि आपके तरफ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हमारा भी ये वो गाना है और बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और मैसेज करने वाले हैं खुर्शीद आलम जी, और लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ शाहजहाँ जी बहुत अहो तो गुस्सा बड़ी तो मनावे खाते गाने की फरमाइश पा। ठीक है, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और अपनी श्रीमती जी को बोलिए कि रेडियो से कान लगा के रहें और कभी भी आपके गाने की फरमाइश आ सकती है। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग आए हो मेरी जिंदगी में, और हम कितने नंबर पे हैं। और शुभम कुशवाहा जी हैं बंजारी से, तो बिल्कुल आपका भी नंबर आने वाला है, थोड़ा और इंतज़ार करिए और आपका नंबर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ सोनू जी जुड़ चुके हैं गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लिख रहे हैं कि मेरा भी एक फरमाइश है, फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से और गाना सुनना है इनको बेईमान प्यारे, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को।

और यहाँ मुस्तफ़ा जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। और आगे यहाँ कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये मेरा भी गाना है, प्ले कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, और एक एक करके सबके गाने जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है मेरा। फिलहाल मुस्तफ़ा जी की फरमाइश को इंजॉय करिए, काफ़ी खुश।

90.4 रेडियो रंजन सर आप सभी और कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ अगला फरमाइश हमारे पास है पंजाब से, रंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है इनको मोहब्बत ना करना। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रंजन 90.4 FM पर।

0: 104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले हैं रंजन कुमार जी पंजाब से। और यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हाँ हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्कार सोनी जी।
0: जी नमस्कार, कृष्णा प्रसाद बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी, बाप रे बाप, सीरियस में रह जाते हैं। आई घंटा कल के नंबर लगौले बानी।
0: अब तब वो नंबर ना हुए।
1: तब वो नंबर ना हुए, रिंग होते रहे, लेकिन रामा जी भाई के कॉल उठ रहे, हमारा रिंग कट गए।
0: अच्छा, राहुल कट हुए तो रामा जी भाई के फोन आ गए ना।
1: तो
0: वो अक्सर ऐसे ही करे नी, बिना सोच ले बोल देवे नी और तुरंत फोन कट कर देवे नी।
1: अच्छा। कैसन बानी?
0: सब बढ़िया बा। रउआ बताए कैसन बानी और रउआ जने मौसम कैसन बाटे?
1: गोपालगंज में काम करता
0: अच्छा, तभी बारिश होता कि बारिश बंद बा?
1: ना बारिश तो बंद बा।
0: चलिए फिर तो बढ़िया बात है, का सुने आज बताई, का सुनवा दी
1: आज? तो हमरा जो गाना सरोता का चुन ले बानी, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है।
0: जी तो गाना प्ले कर देनी राउर
1: यार, हम मैसेज उसे ना करे वाला तो निकालो पे ध्यान दे मतलब
0: देवे निकालो पे ध्यान देवे नहीं। अब कॉल ऐसे आवेला गाना चलत के बीच में, गाना खत्म होके के बाद कॉल आवे के चाहिए।
1: ध्यान देना कि तो कल आधा घंटा हो गाना चल रहा है, बहुत पूरी तरह दर्शन ना हो गया, भगवानों से दर्शन हो जाए तो
0: कोई ना, चली गाना एंजॉय करी, गाना प्ले कर दे लेवन राहुल, आदमी खिलौना है के टाइटल सॉन्ग।
1: जी
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए। और इसी गाने की फरमाइश थी सविता चौहान जी की, वो छपरा से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, आपकी भी फरमाइश पूरा होती है।

और यहाँ मैसेज है उमा शंकर मिश्रा जी, सोनी मैम सविता कौन है? तो सविता देवी जी वो भी हमारी एक लिसनर है जो कि रेगुलर लिसनर है और हर शो में पार्टिसिपेट करती है, जुड़ती हैं, और उनके तरफ से भी गाने की फरमाइश थी तो उनका भी फरमाइश प्ले हो चुका है, इंजॉय करिए। और यहाँ आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है विशाल पांडे जुड़े हुए और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए। और इसी गाने के बाद हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार की तरफ और फिर आप सभी से मुलाकात होगी दोपहर समाचार के बाद।

0: यहाँ शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
5: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
6: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH
10: 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
14: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
13: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
14: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
15: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
16: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
17: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
18: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
19: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
20: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
19: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

और हमारे पास यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, हाय सोनी मैम, कैसी हैं आप? आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है और आज मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं, बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ 2:36 हो चुके हैं शुरू घड़ी में और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं और यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची है। सबीना खातून जी हैं फ्रॉम दुलदुलिया से और गाना सुनना है बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलाओगे और डेडिकेट है आप सभी के साथ सुनना चाहती हैं तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है तो प्ले कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है आज मेरे हैप्पी वाला बर्थडे है। ओहो तो जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रेडियो रिमझिम की पूरी परिवार की तरफ से सबीना जी और भगवान करे आप ऐसे ही हमेशा खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए और आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे और आज आपका बर्थडे है तो चलिए आपके बर्थडे पे आपका बर्थडे सॉन्ग प्ले कर रहे हैं एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सबीना खातून जी की तरफ से। तो इसी गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं, मैम मैंने भी वॉइस भेजा था मगर अभी तक शामिल नहीं हुआ सागिर। तो जी आपका भी बजेगा लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं सोनू गौसिया से मैं भी जुड़ गया हूँ शो में, मेरा एक गाना है पूरा कर दीजिएगा। गाने के बोल हैं, गली में आज चांद निकला। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सोनू जी के साथ ये खूबसूरत सा गीत।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: अच्छा कर सकूं?
1: जी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धीरे धीरे एंकरिंग करना अच्छा लग रहा है सभी लोगों
0: को। वैसे आपका नाम?
1: पप्पू ठाकुर मैं बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी,
1: तो सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा?
1: एक पुराना सॉन्ग है, फिल्म का नाम था सफर। अब गाने का बोल भी यही है जिंदगी से।
0: आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, एक बार और बोल दें।
1: सफर मूवी का गाना है
0: और
1: गाने का वही बोल है सफर।
0: सत्तर
1: गाना वही है, ये गाना सुनवा दीजिए।
0: और कौन गान और डेडिकेट भी करना चाहते हैं किसी को?
1: जी जी जी, जितने पुराने बंदे हैं जो सुन रहे हैं
0: जी,
1: उन लोगों के लिए। और रमाजी प्रसाद जी के लिए, और सऊदी से जी हैं एक आदमी जुड़ते हैं, यूपी चौहान पारी के लिए, और कभी रंजन जी है ना उनके लिए भी है ये गाना। जी सुना दीजिए।
0: एक बार और बता दीजिएगा मुझे गाने के बोल।
1: क्या वो गाना है? वो पूरा याद नहीं आ रहा है, दूसरा ही गाना है उसमें का, राजेश खन्ना का फिल्म है। गाना है दूसरा सॉन्ग है उतना ही है, वही उसका होगा ये गाना है। गाने का बोल हमको याद नहीं आ रहा है।
0: ओके
1: खाने का बोल है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, एक बात है।
0: ओके ओके, चलिए फिर आपका गाना प्ले कर दिए हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जिंदगी का सफर

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिंदगी का सफ़र, और इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आज मेरा वह सॉन्ग बज सकता है, तो जी बिल्कुल बजेगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा बता दीजिए। तो सबका सॉन्ग एक एक करके प्ले कर रही हूँ, और थोड़ा सब्र रखिए। और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, हमरो एगो गाना के फरमाइश बा बजा दी, और गाने का बोल है ये प्यार बहुत बेदर्दी है, और फिल्म नेम है अपराधी। हम सुनावल चाहते नहीं, और मैसेज करने वाले हैं खुर्शीद आलम, और लिख रहे हैं माय वाइफ शहनाज जी के बहुत गुस्सा वाणी है। अच्छा जी, तो काहे गुस्सा वाणी यो बता दी, और हमार गानवा ना बजाएम का सोनी मैडम। तो गाना राउर अभी प्ले करे जाते नहीं, और अपन गाना के इंजॉय करी। और ना गुस्सा होके दे हम रोग वाइफ के।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: हेलो हेलो, क्या बोला था?

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97746164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है

0: 7545 67 666।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 4498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
2: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
13: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
12: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
13: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
13: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
13: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-8947 या 9198-8869-73।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434403।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70705763 या 70705042, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।

0: दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजद पर।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते
6: जी, गाना सुनना है। ताजपुर से बोल रहा हूँ, ताजपुर से संदीप कुमार शर्मा।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: मैडम मौसम भी सुहाना हुआ है, धाम भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, आवाज थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी काउंटेड काम चला रहे हैं। उमर जैसा दिन हुआ है। मैडम गाना सुनना है,
5: बता दीजिए कौन सा।
6: हिंदी गाना कोई अपने पसंद से सुना दीजिए।
5: अच्छा चलिए, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते।
0: मैडम गाना सुनना है?
1: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: तो गाना है तो परिवार का मर गई दीवाना गई मेरी और के मर गई दीवाना मेरी और।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, मेरा भाई है, अरविंद है, संदीप है और जयराम।
1: तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
9: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
11: नमस्ते मैम। नमस्कार।
10: नमस्कार,
11: मैं सुधीर को बोल रहा हूँ, करजुआ जिला देवघर झारखंड से। मैम
10: हाँ जी, कैसे हैं आप?
11: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
10: हम भी अच्छे हैं।
11: और आपके रेडियो रिमझिम के पूरे टीम सब कैसे हैं?
10: सब कोई अच्छे हैं
11: जी। बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी मैम?
10: नहीं।
11: पर ट्राई किया जो बता रहा था, पुरानी भोजपुरी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम।
10: कौन सा?
11: गंगा किनारे मोरा गाँव का, आशा भोसले की आवाज में है, गीत के बोल रहे हैं।
10: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी?
11: जी मैम, सबसे पहले आपको रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोतागण हैं देश विदेशों में, सबों को सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हमारे साथी सर हैं, मदन कोल हैं, राजकुमारी हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, भोलाना कोल हैं, कृष्ण कोल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
10: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम।
11: ओके मैम।

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी आपको भी स्वागत है मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम का रिकॉर्डिंग करने का। और मैं बुधवार को क्यों नहीं हुआ रिकॉर्डिंग?
1: छुट्टी पे थे हम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए।
0: अच्छा तो चलिए, ये तो भाई किसा बस की बात है, कभी सा तबीयत खराब हो जाए, चलिए कोई बात नहीं है, एक दिन छुट्टी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। सपनों से प्यारा घर दुआ के लिए है ना, हमारा घर दुआर सपनों से प्यारा कैसा कैसा गाना है वो
1: है
0: ना। हाँ, एक घर संतार बोलते
1: है,
0: वही गाना सुनवाइएगा आज।
1: अच्छा
0: तो और कैसा दिन कट रहा है मैडम?
1: सब सही कट रहा है,
0: ऊपर वाले के मस्जिद से ना।
1: हाँ।
0: एक बहाना अच्छा है यार, ऊपर वाले के मस्जिद है ना, अच्छा बहाना है, जो कुछ अपने से ना हो ना तो ऊपर वाले घर पे डाल दो।
1: नहीं, आदमी तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन वो साथ ना हो तो कहाँ कुछ होने वाला है।
0: तो वैसे तो जिंदगी में चढ़ाव उतार होता ही है, घबराना भी नहीं चाहिए है ना, अपना जो योगदान पूरा देते रहना चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है।
1: ये तो सही बात है।
0: तो ऐसा ही संघर्ष कीजिए मैडम, एक दिन फल मीठा होगा। हाँ वो कहा एक कहावत और है ना, मेहंदी भी जाती है ना, रंग हीना लाती है मेहंदी भी जाने के बाद। हाँ जब पीता है मेहंदी तभी तो कलर आता है, वही बात है। तो हमको ये जो है मैडम आज उचित है कि घर द्वार फिल्म का गाना वो सुना जाए। ये घर द्वार का बहुत अमीर पैसा है रेडियो स्टेशन पे, लोग नया तो नया, पुराना तो बहुत अमीर लोग नाम लेते हैं। हाँ चलिए, तो आपको आज तो चलिए मेरे तो ठीक है, सब रख रहे हैं, गाना दीजिएगा।
1: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़, SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
11: नमस्ते मैडम जी।
10: नमस्ते,
11: भारती बोल रहे हैं मैडम जी।
10: हाँ,
11: और मेरे रिकॉर्डिंग ना हुआ?
10: नहीं,
11: बहुत बस बता सकता।
10: बुधवार को नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग।
11: चलाती है दूसरा मैडम, चलाती है।
10: हाँ हाँ, कभी कभी कोई और भी रिकॉर्ड करती है, है।
11: और मैडम जी और अपनाइए।
10: अच्छा है? हाँ हाँ, मेरा अच्छा। आप बताइए, आप कैसे हैं?
11: जी अच्छा।
10: नाश्ता हो गया आपका?
11: जी मैडम जी।
10: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
11: तो मेरा गाना वो सुनाती है नई नाम से, कभी छोड़ देती है कभी सुनाती है।
10: नहीं नहीं, हम छुट्टी में थे ना, इसीलिए नहीं चला।
11: सुना दीजिएगा, रब ने बनाया इसीलिए।
10: एक बार और क्लियर कर दीजिए।
11: रब ने बनाया इसीलिए।
10: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
11: ये मैडम आपको जितना रेडियो शब्दों सुनता है किसी के साथ।
10: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
11: ये मैडम जी नमस्ते।
10: नमस्ते।

0: हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में। हेलो
1: जी मैम, मेरे अस्सलाम पठानपुर से।
0: जी कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है, आपने बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज तो जुम्मा है, बोले फिरको वाली सुना दीजिएगा, आज जुम्मा है।
0: अच्छा चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंगीन 90.4 एफएम।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMAZ पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Love won't end, baby.
1: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। हेलो, हाँ बोलिए।
16: क्या हाल है?
15: मेरा तो ठीक, आप अपना बताइए। खाना हो गया आपका? हो गया। नाम बता दीजिए अपना।
16: संध्या कुमारी, नंबरदान।
15: अच्छा, तो हाँ हाँ, गाना किसी को सुनाना भी है?
16: आप रेडियो रंजन सभी को।
15: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो रंजन 90.4 FM
1: जी, गाना सुनने का।
0: नाम बता दीजिए।
1: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं, जिला भागलपुर, तीर्थपति ग्राम प्रखंड।
0: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: मेजर साहब का सुना दीजिए।
0: अच्छा,
1: अकेली ना बजा रही दया।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: पवन को सुनाना।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
14: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी धन्यवाद इस शो में।
14: चल चल
13: अच्छे हैं मैम, आज आप बताइए हम कौन बोल रहे हैं, आज हम नहीं बताएंगे। हेलो,
14: मैं तो पूरा कंफ्यूज हूँ
13: जी। मैम कोई बात नहीं, सफेद अली बोल रहे हैं गोपालगंज से।
14: अच्छा हाँ,
13: आपका सुनकर इंतजार रहता है हमें बहुत।
14: अच्छा जी, चलिए ये तो अच्छा है कि सुनते हैं आप।
13: मैम रेडियो में एक बात है कि रेडियो सुनते हैं तो अपना सब गम भूल जाते हैं।
14: ये तो है, सबकी फरमाइश सुनना अच्छा लगता है सब,
13: लेकिन जब तक वो चलता है तब तक बहुत अच्छा लगता है।
14: क्योंकि मानिए तो बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, सबको एक साथ जुड़ते हैं, सबको एक दूसरे से बातें करना लगता है।
13: इसलिए सभी लोगों को, सभी आरजी को धन्यवाद है मेरे तरफ से।
14: जी जी, और बताइए सब क्या हो रहा है?
13: नहीं, दुकान पे है अपना, टाइम देकर जुड़े हैं।
14: गाड़ी पे कौन सा गाना सुनना है?
13: ये मुझे गाना सुनना है, गाना का नाम है इस दिल्ली गली, ये राहत अली खान का।
14: जी,
13: तो कहेंगे यही कि आप पूरा फुल सॉन्ग सुनाइएगा।
14: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
13: सभी सुनने वालों को, सबसे पहले तो आपको, सोनी मैम को, सोनू सर को।
14: जी जी,
13: और ये गाना बहुत प्यारा है मैम।
14: जी बहुत प्यारा है, हम भी सुने हैं।
13: जी मैम, तो फुल सुनाइएगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, और जल्दी जल्दी बताइए कब तक बजेगा, मतलब आज या कल
14: करेंगे बजाने को, नहीं तो कल तो बज जाएगा।
13: मैम तो फर्स्ट में लगाए तो कभी भी फर्स्ट में नहीं पाता है, फर्स्ट में लगाइए ना कभी।
14: अच्छा, पूरी कोशिश करते हैं।
13: कोशिश करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करके आप मेरा करेंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है मैम।
14: जी जी
13: जी मैम, इंतजार करेंगे आपके फोन का। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको डायरेक्टर सर को धन्यवाद, तो हमेशा चलाइएगा मैम।
14: जी जी बिल्कुल, आपको शो अच्छा लगा इसलिए आपको धन्यवाद।
13: जी मैम, सोनी मैम नहीं आ रही है क्या?
14: आती है,
13: इस शो में नहीं आ रही है
14: वो, योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना अभी, इसीलिए। और
13: कोशिश नहीं की शो में आने का, भोजपुरी एक्सप्रेस में
14: आप
13: आधे घंटे के लिए भी आइएगा, कोशिश कीजिएगा आने का, हमको बहुत अच्छा लगेगा, दो आदमी चलाएंगे शो तो।
14: इसके लिए सर बोलेंगे तभी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के अनुसार ही होता है।
13: जी मैम, ये भी बात सही है। चलिए धन्यवाद, और भी लोग हैं हम प्यारे और लोग जुड़े।
14: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
13: बाय
14: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, रामदेव जिला से।
0: जी क्या हालचाल है आपका?
1: अच्छा,
0: आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
1: सर अच्छा है, नाम अपना बताइए।
0: हम भी ठीक हैं।
1: और मौसम क्या हाल चाल है?
0: मौसम तो अभी फिलहाल ठीक है, ठंडा है।
1: बारिश वगैरह आ रहा है कि नहीं उधर?
0: बारिश तो आता है दिन में या फिर रात में, एक बार आ ही जाता है।
1: हमारे तरफ भी बारिश भेजिए, हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रहा।
0: अच्छा बिल्कुल जाएगा।
1: मुझे गाना सुना दीजिए। एक गाना मैं फिल्म में तारों की रात भर तेरे दिख रही रहता है।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: मैं फिल्म में सितारों की रात भर तेरा दिख रही रहता है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आपके लिए और पूरे रिमझिम परिवार को, जितने भी रिमझिम श्रोता है सभी के लिए।
0: जी जी चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 99393-65923।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
16: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8002-9994। जी हाँ 8002-9994। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
18: नमस्कार।
17: नमस्कार,
18: ये भारती जी ना? क्या हाल बा?
17: हाल तो ठीक बा, अपन बताए।
18: ठीक है बा, आज बहुत परेशान हो गई हूँ।
17: क्या है?
18: फोन लगाओ तो लगाओ।
17: अच्छा फोन ना लगा
18: ना, आज बहुत बिजी हम कौन एक बुझा कर सोने जी आई है क्या, इसीलिए इसका बिजी चल रहा है?
17: नहीं,
18: वो मनोरमा मैम को कब हुआ था रिकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं था।
17: वो सोमवार रिकॉर्ड की थी।
18: पिछले सोमवार को?
17: पिछले सोमवार को,
18: हमें पता नहीं, हम भी तो किए थे, तो आपसे बात हुआ था ना?
17: इस सोमवार को नहीं, ये पिछले सोमवार को हुआ था।
18: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगला सोमवार को, इस सोमवार को नहीं। तो वही मैं सुना, कल सुना तो मैं सोचा की मनोरमा मैम पे कभी तो बातें नहीं हुआ है, पता नहीं कब हुआ है रिकॉर्डिंग कब नहीं।
17: नहीं तो इस बार बुधवार को कहाँ रिकॉर्डिंग हुआ?
18: तो अगली बार तो बुधवार को तो नहीं हुआ है, मैं पता है। और अभी क्या हो रहा है?
17: अभी बातें हो रही है सभी से, और क्या।
18: चलिए ठीक है, अब मुझे गाना सुना दीजिए।
17: बता दीजिए।
18: तो शादी हुई बर्बादी हुई फिर से रख के
17: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
18: बस काफी लोगों को।
17: अच्छा चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
18: ठीक।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम सागर राजन मार्ग से रामाजी प्रसाद।
0: हाँ जी, हाल चल बरा और
1: हाल चाल ठीक बार आपको पसंद होता।
0: अच्छा, गर्मी बता गए बता दी
1: बना के क्यों बिगाड़े नसीबा ऊपर वाले।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना होंगे बा?
1: बाजार में समोसा वाला पप्पू प्रसाद, सब्जी वाला रामाजी प्रसाद, किराना वाला हरेंद्र प्रसाद, हम रहुआ सब कोई।
0: जी जी, चलिए फिर एक बार और गाना प्ले करते नहीं सुनत नहीं सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करें 87894-18744।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-11। जी हाँ, 8029-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम।
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
18: जी अस्सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम,
18: क्या हाल है?
17: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
18: मेरा भी ठीक है, आप सब बताइए। नाश्ता हो गया?
17: जी मेरा नाश्ता हो गया। आपका हो गया?
18: हाँ मेरा भी हो गया है।
17: और सब सुनाइए, और सब ठीक है ना?
18: हाँ हाँ बताइए।
17: जी जी हमारा भी ठीक है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
18: गाना सुनेंगे, अभी बता रही हूँ। वो गाना है ना, मेरा प्रिया परा रंगीला, यही वाला सॉन्ग बजा दीजिएगा।
17: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
18: सबसे पहले मेरी भाभी रुकैया को, और आपको, सोनी भैया को, दिव्या मैम को, और मेरी बहन लोग है, और सुनने वाली सभी दोस्तों को सुनवाना चाह रही हूँ।
17: जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।
18: थैंक यू मैम।
17: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम, कैसे हैं आप लोग?
1: नमस्कार, हम सभी तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं, आप लोग से दुआ का आशीर्वाद से।
1: नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है, अभी तो अपनी दुकान पे हूँ मैं।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया है। बता दीजिए कौन कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: हाँ जी, अज्जाद सिफाई गिटर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: गाने के बोल
0: दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त हो रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
3: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
10: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार
10: जी मैम, गाना सुनना था
11: जी। नाम बता दीजिए अपना।
10: जी मेरा नाम पप्पू कुमार शाह है, पड़ोना बढ़िया से
11: जी।
10: कैसी है मैम?
11: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: जी मैम हम भी अच्छे हैं। आप नई आई है क्या मैम?
11: जी मैं तो भारती बोल रही हूँ।
10: तो भारती में बोल रही
11: हूँ,
10: हमसे दूसरा कोई थोड़ा आवाज आ रहा है। तो गाना सुना दीजिए।
11: कौन सा?
10: प्रेम रतन धन पायो।
11: ओके, और गाने किसी को सुनाना भी है?
10: अब रेडियो रिमझिम जिसमें भी श्रोता सुन रहा है सभी के लिए, अब आप भी सुनेंगे।
11: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 92.4 एफएम।
10: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग भारती मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, बहुत ट्राई कर रहे तब बाद में फोन लगी हमारी।
1: अच्छा,
0: भारती मैम बोल रही है ना?
1: हाँ।
0: तो मैम क्या हो रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं, बस कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है
0: जी। मैम क्यों नहीं लगता? बहुत ट्राई करने के बाद आधा घंटा से ट्राई कर रहा हूँ मैं।
1: तो
0: बहुत
1: कॉल बिजी भी तो जा रहा है।
0: हाँ, बहुत बिजी बिजी बिजी हर समय बता रहा है। मैम एक तो गाना सुनना था
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
0: प्यार झुकता ही कि नहीं, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, क्योंकि हमारी वाइफ का चॉइस है कि प्यार झुकता नहीं का सॉन्ग सुनना है।
1: अच्छा, प्यार झुकता नहीं मूवी है?
0: जी जी जी, मूवी का नाम है प्यार झुकता नहीं, उसका
1: अच्छा।
0: कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: चलिए, और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
0: सॉन्ग तो सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाना है और अपने नाती पोता बेटा बेटी दामाद बहू सबको सुनाना है।
1: अच्छा चलिए ठीक है, अपना नाम भी बता

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8009994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

विक्रम ने फिर एक बार बैताल को वृक्ष से नीचे उतारा और अपने कंधों पर डालकर चल दिया। रास्ता काटने के लिए बैताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की, जो थी एक प्रेम कहानी, एक

राजकुमारों ने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। इस कठिन समस्या के हल के लिए राजा ने उन चारों के सामने एक शर्त रखी। बोले, मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूं। अगली पूनम तक जो भी राजकुमार राजकुमारी के लिए सबसे अनमोल भेंट लाएगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डाल देगी।

0: कोई चमत्कारी योगी है?
1: किसी राजकुमारी को चाहते हो, परंतु मेरा रास्ता तो अलग है। मैं संसार में प्राणियों को भगवान की राह दिखाता हूं।
0: अगर कोई प्रेम को ही भगवान मान ले तो?
1: प्रेम भी एक तपस्या है। जो इंसान से प्रेम नहीं करता वो तो भगवान से क्या करेगा? मैं तुम्हारे मन की बेचैनी समझता हूं। मैं एक जप करने वाला हूं। यदि मेरा जप बिना विघ्न के समाप्त हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
2: इतना जल्दी थक गए बेटा? प्रेम यात्रा तो बहुत कठिन है।
3: इसको मेरी प्रेम यात्रा का कैसे पता है? माँ, बरखा आ रही है, मैं तेरे लिए कुटिया बनाता हूँ।
2: मुझे अंधे से तुझे क्या मिलेगा बेटा?
3: माँ का आशीर्वाद, जो जो संसार में सबसे शक्तिवान है।

0: मैं एक वैद्य हूँ। इस वन में क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी मेरी गई हुई आयु मैं समझा नहीं। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था कुष्ठ रोगियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र खोलूंगा। उसके लिए मुझे शक्री चाहिए। शक्री पाने के लिए मैं क्रिया करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे एक कुंवारा लड़का चाहिए।
1: मैं हाजिर हूं।
0: तुम पर मेरा क्या अधिकार है बेटे?
1: मेरी मां ने कहा था बड़ों की सेवा करना और बिना किसी मतलब की सेवा करना।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है।

0: क्या बात है?
1: ये कारिंग मुझे दे दो।
0: लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: इसके बदले ये हीरे की अंगूठी है, बहुत अनमोल है, इसे ले लो।

जान बचाकर ये कालीन जीत लिया है। आज से इस कालीन के मालिक तुम।

आज मेरा जाप समाप्त हुआ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल चीज भेंट करूंगा कि तुम जिस राजकुमारी को चाहते हो, तुम उसे जब भी याद करोगे वो तुम्हारी नजरों के सामने होगी। ओम नमः शिवाय।

0: मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, किंतु मेरे मंत्र का तभी असर हो सकता है यदि मैं तुम्हें देख सकूं।
1: क्या ये रोशनी वापस नहीं आ सकती?
0: आ सकती है, परंतु इसमें प्राण का खतरा है।
1: आप चिंता न करिए माँ, मैं प्यार पाने से पहले मरूंगा नहीं। आप सिर्फ उपाय बताइए माँ।
0: बेटा, सामने मेरी गुरु की समाधि है। समाधि के पास एक मिट्टी का ढेर है जिसके ऊपर कच्ची धागों से बंधी तलवारें लटक रही हैं। तुम्हें उस मिट्टी के ढेर में छिपा यंत्र निकालना होगा, मगर जैसे ही यंत्र निकालना आरंभ करोगे मेरी गुरु की समाधि जागृत हो जाएगी, तुम बच जाओगे। पास लटकी हांडी से पानी टपकना शुरू हो जाएगा, 10 पल के अंदर ही यंत्र निकालना होगा। 10 पल समाप्त होते ही माटी की हांडी फूट जाएगी और तलवारें तुम पे गिर पड़ेंगे जो तुम्हारे प्राण ले सकती हैं।

ठीक है रॉ, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम एक राजकुमारी से प्रेम करते हो, मेरे दिए हुए उपहार से तुम राजकुमारी का प्रेम जीत लोगे।

0: धन्य हो माँ, धन्य हो। अब मैं राजकुमारी का हाथ अवश्य जीत सकता हूँ।
1: बेटा, मेरा एक दुश्मन भूतनाथ जादूगर तुम्हारे इस काम में विघ्न डालेगा, किंतु किंतु ये माला उसके जादू का तोड़ है। लो बेटा।
2: मैं समझ गया महाराज।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
9: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
10: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
7: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा, मिला ही नहीं
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ऐसी चीज मिली है जिससे आप सबको हार माननी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय।

0: वैद्यराज क्या कह रहे हैं ये तुम नहीं कह सकते, ये मैं बता सकता हूं। जय भोले शंकर।
1: महाराज कोई औषधि असर नहीं कर रही है, ईश्वर न करे राजकुमारी आज रात तक।
0: हमें वहां फौरन चलना चाहिए, राजकुमारी की हालत खराब है। और मैं तुम सबको ले जा सकता हूं।

0: महाराज, महाराज राजकुमारी कैसी है?
1: हम तो निराश हो गए।
0: राजकुमारी
1: अब कुछ घड़ियों की मेहमान है, अब उसका कोई इलाज नहीं।
2: ये फूल आप राजकुमारी को सुंघा दीजिए,
1: वो ठीक हो जाएगी, हमारी बेटी बच जाएगी।

0: क्या ये फूल तुम हमें दे सकते हो?
1: अब इसका कोई फायदा नहीं महाराज, ये फूल एक ही बार असर करता है, अब इसका असर जाता रहा।

0: मैं तो अपंग हूं, राजकुमारी के योग्य नहीं हूं, मैं तो चला।
1: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न, बता विक्रम, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए?
2: जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ
0: बैताल, ये ठीक है कि शीशे से वो राजकुमारी दिखी, जादू की आवाज से उसके रोग का पता लगा, कालीन से वो सब राजकुमारी के पास पहुंच गए, किंतु राजकुमारी के पास पहुंचने से भी क्या लाभ होता यदि अमर के पास वो चमत्कारी फूल ना होता? अपाहिज अमर यदि चाहता तो उस फूल से अपने आप को भी अच्छा कर सकता था, किंतु बेताल उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया और राजकुमारी को अच्छा किया। अमर भावरा नहीं, दीपक है, उसने अपने आप को जलाकर राजकुमारी को जीवन की रोशनी दी, इसीलिए राजकुमारी उन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अमर को मिलेगी, उस पर केवल अमर का अधिकार है।
3: अमर, अमर, राजकुमारी पर अधिकार तुम्हारा है। हाँ, अपंग होने से तुम्हारा अधिकार घटता नहीं और बढ़ता है। आप अपनी खुशनसीबी को मत ठुकराइए।
4: आपको हम तीनों की कसम है,
0: किंतु सवाल यह है कि राजकुमारी का अपंग को स्वीकार क्यों करेगी?
5: अमर, अमर, यदि विवाह के बाद पति या पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? इस वक्त जो मैं सांसें ले रही हूँ वो आपकी दी हुई है और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है।
0: ये प्रेम नहीं दया है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दया, नहीं चाहिए।
5: आपके बलिदान ने दया को प्रेम बना दिया।
2: ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय रहें तो वे अत्यंत उत्पादक साबित होते हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्र के पहले दिन लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। बाद में नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नीट मुद्दे को लेकर अपना विरोध जताते रहे। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात पर ध्यान न देते हुए अपना विरोध जारी रखा।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। विपक्ष के हंगामे पर उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि यह परंपरा गलत है, सदस्यों को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए।
3: स्वयं हित में जीने वाले लोग कभी बंगला के लिए हट करते हैं, कभी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कब जनहित के मुद्दों को उठाते देखा। और जब भी सदन चलता है नेता विपक्ष गायब रहते हैं, अब इसी से उनके गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए।
0: बाद में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, विपक्ष कानून को बचाने का काम कर रहा है।
4: नीट पेपर लीक जो मामला हुआ है और कई ऐसे सरकार के द्वारा परीक्षा ली जा रही है जिसकी पेपर लीक हो जा रही है, उसी को उजागर करने के लिए हमारा दल और हमारा गठबंधन ने रोड मार्च कर लिया। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो भाई वीरेंद्र और अन्य जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो तेजस्वी के रूप में काम कर रहे।
0: विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के भाषण और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही चली। इसके बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपए की राशि जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। सत्र के दौरान 10 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। भगवान सोमनाथ धाम की यात्रा के लिए आज 1,100 श्रद्धालु सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
5: आज से 1,000 वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ को ऐसे मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी
6: का। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं गुजरात सरकार की ओर से की गई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना, नई पीढ़ी को अपने इतिहास से परिचित कराना और सनातन परंपरा के प्रति गौरव का भाव जागृत करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार के इस पहल की सराहना की।
7: आज हम सभी बिहारवासी बाबा महादेव के दर्शन के लिए सोमनाथ की शुभ यात्रा पर निकल रहे हैं। ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है।
8: जाने का बहुत हम लोग को खुशी मिल रहा है। बाबा सोमनाथ का दर्शन होगा। हर हर महादेव और बिहार सरकार को बहुत बहुत आभार।
9: पहला यात्रा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया, बहुत ही खुशी की बात।
6: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज विधान परिषद में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सभी सदस्यों को सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए।
10: नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार तो सहयोग हमें मिल रही रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि हम लोग विकसित और समृद्ध बिहार न बने।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी रून्नी सैदपुर में 30 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 105 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके साथ ही राज्य में झंझारपुर में कमला बलान और महानंदा समेत अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं मुंगेर जिले में भारी बारिश के कारण क्यूल जमालपुर रेलखंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लगभग 2 फीट पानी जमा हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: रेलवे प्रशासन ने इस रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इससे कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रही। इनमें भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी रही, वहीं जमालपुर चूल DMU को धरारा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जबकि गया जमालपुर पैसेंजर दशरथपुर स्टेशन पर घंटों तक खड़ी रही। अचानक रेलगाड़ियों के रुक जाने से कई यात्रियों को आगे की यात्रा प्रभावित हुई, जबकि जरूरी कार्यों से जा रहे लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर में यात्री ट्रेन परिचालन सामान्य होने का इंतजार करते रहे। बाद में रेलवे प्रशासन ने रेल ट्रैक पर जलस्तर कम होने और सुरक्षा जांच के बाद कुछ रेलगाड़ियों के परिचालन की मंजूरी दी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
0: मुंगेर पोलो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय 65वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला पश्चिम चंपारण और मुंगेर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पश्चिम चंपारण की टीम ने मुंगेर को 0-3 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ पश्चिम चंपारण की टीम अब बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 20 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि सरकार ने एक मसौदा नियम बनाए हैं। इन नियमों के कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे और केबल तथा DTH शुल्क 4-6 गुना बढ़ जाएंगे। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। समस्तीपुर जिले में पूसा कस्तूरबा विद्यालय की 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना पूसा थाना क्षेत्र के केजिया वार्ड में हुई। मामले की छानबीन की जा रही है। बक्सर जिले के चुरामनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में ऑटो सवार 8 शिक्षक-शिक्षिकाएं घायल हो गए हैं। मधुबनी जिले की पुलिस ने बाबू बरही थाना क्षेत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में मेहंदिया थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण मौत हो गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के SI और चौकीदार पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 कारतूस, 46 ग्राम बाउंड सुगर, 4 मोबाइल और 1 लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सुपौल जिले के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सावन कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा ने संयुक्त रूप से 182 यक्ष्मा रोगियों के बीच निक्षय पोषण किट वितरित किया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला क्षेत्र के वाल्मीकि नगर पनियहवा रेलखंड पर आज एक जंगली भालू की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: मैं बनूंगा
5: मैं भी बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे।
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67600।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
11: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
12: राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, EWS वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2000 26। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में सहायक कुल सचिव का पद रिक्त है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट www.iitism.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2026 को रात्रि 11:59 तक भेजे जा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षण अभियंता, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषक, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, केंद्रीय निष्कीटीकरण एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी, अस्पताल वास्तुविद, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रधान निजी सचिव, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी, भंडार अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी। आवेदन का फॉर्मेट और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट है www.aimsbhopal.edu.in। वसु विज्ञान मंदिर कोलकाता एक पद के लिए ऑडिट एंड फाइनेंस ऑफिसर की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये भर्ती डेपुटेशन के आधार पर है जिसमें पे लेवल 10 रहेगा तथा पद की अवधि 3 वर्ष है। विस्तृत रिक्ति विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, नियम और शर्तों तथा अन्य निर्देशों के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.jcbose.ac.in।
11: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
14: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9939365923।
15: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
16: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
15: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
16: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
17: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
18: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
17: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
18: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
17: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
19: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
20: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
19: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
20: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
19: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
20: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
0: फ्रीक्वेंसी पर।
21: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
0: ऑलराइट।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मालदवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
4: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तेज बारिश के कारण पुंछ और राजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने

0: मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
1: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गो के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।

0: है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने बाढ़ को लेकर स्थिति का किया निरीक्षण। सदर SDO ने अंचल कार्यालयों का किया औचक जांच। हथियार तस्करी के मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कटान का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ इंजीनियर ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में मौसम को लेकर संभावित बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण रखने के हिसाब से आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने तटबंधों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरफरा बांध, डुमरिया घाट और विभिन्न छरकियों का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था और राहत संसाधनों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को तटबंधों में लगातार निगरानी, किसी भी क्षति की तत्काल सूचना देने और सभी आपदा प्रबंधन संसाधनों को हर समय तैयार रखने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार सरफरा बांध, डुमरिया घाट सभी तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं से भी कटाव, रिसाव या क्षति की कोई सूचना नहीं है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने आज प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक एवं जन कल्याणकारी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की साफ सफाई, बायोमेट्रिक उपस्थिति, अभिलेख संधारण, RTPS सेवाओं, योजनाओं की प्रगति तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जाँच की गई। इसी क्रम में प्रखंड कार्यालय के सहायक को लॉग बुक अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति संतोषजनक पाई गई। अंचल कार्यालय में कैश बुक को अद्यतन करने हेतु अंचल नाजिर को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही RTPS केंद्र में उपलब्ध जन सेवाओं एवं उनके संचालन का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित ग्रामीण महिलाओं से भी उन्होंने संवाद किया और सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली। मीरगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरखौली ढाला के पास एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहचान छिपाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। पकड़े गए आरोपी का नाम रॉबिन सिंह है, जो सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी उखही गाँव के अनिल कुमार सिंह का पुत्र है। रॉबिन सिंह ने स्वीकार किया कि वह मनोज यादव और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों की तस्करी करता है। मनोज यादव के कहने पर ही कई बार मनोज यादव को अवैध हथियार भी उपलब्ध करा चुका है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हरखौली स्थित मनोज कुमार के घर भी छापेमारी की। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, किंतु पुलिस बल ने उसे भी खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सनोज कुमार, पिता राजेंद्र चौधरी, साकिन हरखौली, पश्चिम टोला थाना मीरगंज बताया। पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी सनोज कुमार ने बताया कि उक्त हथियार एवं कारतूस मनोज यादव के द्वारा रॉबिन सिंह के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे। उसने अभी स्वीकार किया कि वह सोनू कुमार के साथ मिलकर अवैध हथियारों की बिक्री करता था तथा संभावित खरीदारों को दिखाने के उद्देश्य से हथियारों का वीडियो बनाकर भेजता था। अब दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हथियार एवं कारतूस के साथ इन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध वीडियो और फोटो भी मिले हैं, इस पर भी जांच किया जा रहा है। साथ ही इसमें संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। गंडक नदी में बारिश के वजह से थोड़ा जल की वृद्धि देखने को मिल रही है, परंतु स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रित है। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे YouTube चैनल पर पुराना कटाव का वीडियो जारी कर उसे हाल ही का वीडियो बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भय पैदा हो रहा है। इसको लेकर आज गोपालगंज के बाढ़ नियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर से बातचीत की गई। उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि जलस्तर खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। सोमवार को 1,00,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जो निकल रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता मोहम्मद शाहिद इकबाल ने बताया कि बाढ़ को लेकर कोई खतरा नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं, अन्यथा प्रशासन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इस दौरान उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
0: मेरा साधन तटबंध 80 किलोमीटर से 152 किलोमीटर के बीच और जितनी भी संलग्न छड़कियाँ हैं अभी पूर्णतः सुरक्षित है। कहीं कोई कटाव या इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। हम लोग दिन रात चौकसी और निगरानी बढ़ते रहे हैं। हर जगह जो है, हर एक किलोमीटर फ्रंट लाइन में मेरा तटबंध श्रमिक है। अभी JEE SDO सब गश्ती दल रात भर गश्ती दल भी करते हैं और कहीं इस तरह का नहीं है। अभी के टाइम तक हम लोग बहुत पूरे तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है। कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स जो है दूसरे जिला का मामला ला के कटाव का यहाँ एडिट करके यहाँ हमारे तटबंध में जो है नाम देके इस तरह का भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ कटाव हो रहा है, और पूर्व के वर्षों का भी कुछ जो है यूट्यूब से अपना अपलोड करके कर रहे हैं। इस मामले में हम अभी आए थे डीएम सर गोपालगंज को, हमने इसका शिकायत भी किया है कि सर इस तरह की बातें हो रही है, और कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, सभी जो है इससे संतुष्ट हैं कि अभी सभी तटबंध मेरा सुरक्षित है, कहीं कटाव नहीं है। हम लोगों की रात भर गश्ती, दिन भर 24 घंटा सतत निगरानी रख रहे हैं, और अभी कोई बाढ़ की अभी समस्या नहीं है। अभी कोई इस तरह का पानी नॉर्मल में है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर फिर दोबारा, सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कोई यूट्यूब में ना डालें दूसरे जिला का चीज़ों में, अगर इस तरह की बातें होती है तो विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाए।
15: पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से लगभग आधा दर्जन लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। इन सभी को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र का है, जहां झपटमारी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी निहाल सिंह है, जो कुचायकोट के जगतौली का निवासी बताया जा रहा है। इधर हत्या के प्रयास में बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के साफिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी धीरज कुमार है, जो रंजीत शाह का पुत्र है, और दूसरा रंजीत शाह, यह रामनाथ शाह का पुत्र है, यानी दोनों बाप बेटे हैं, और इनके साथ एक महिला को भी पकड़ा गया है। तीनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों नगर थाना क्षेत्र के पार नवादा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी भोला सहनी है, उर्फ धर्मेंद्र सहनी, दूसरा राम कृपाल सहनी, और तीसरा चंदन कुमार बताया जा रहा है। ये सभी नवमी सहनी के पुत्र हैं। तीनों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त कुणाल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी हमीदपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर इसके गांव क्षेत्र से ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम राधे श्याम यादव है, जो शंभु यादव का पुत्र है, और यह कल्याणपुर कटहरी थाना भोरे का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था, इसे भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी कई फरार अपराधियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर फरार अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर निष्पादित करने का प्रयास किया। इस दौरान सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इसमें भूमि विवाद, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आधार, सड़क, आवास तथा अन्य जन समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर तत्काल संपर्क कर आवश्यक निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने बाढ़ को लेकर स्थिति का किया निरीक्षण। सदर SDO ने अंचल कार्यालयों का किया औचक जांच। हथियार तस्करी के मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कटान का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ इंजीनियर ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास में अलग अलग जगहों से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
11: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
11: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
11: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
11: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
16: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
16: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
18: सुनिए सुनिए सुनिए,
19: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
18: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
19: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
20: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
21: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
20: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
21: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
20: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
21: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
22: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
20: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
8: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रामछिम 94.4 FM पे। समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू हो चुका है SMS फरमाइश का। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, तो पुराने गाने के साथ ही इस कार्यक्रम में इंजॉय करना है। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप भी फरमा सकते हैं अपने पसंद के गाने और सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। किसी को सुनाना चाहे तो भी सुना सकते हैं। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया जी नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। और गाने सुनने हैं तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम दिल्ली से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, क्या हालचाल, सब मस्त है ना? और मैं भी जुड़ गया हूं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, एकदम बढ़िया है। और अपना बताएँ कि आप कैसे हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, शौंग मेरे महबूब, वो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं तेजपुर आसाम से सगीर अंसारी जी, और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम शाहजहां और हजरा को। तो बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे, फिलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय क्या हाल है, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हैप्पी वाला बर्थडे है तो ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं रेडियो रामछिम परिवार के तरफ से। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में जो भी मन्नतें मांगे वो पूरी हो। आगे मैसेज पहुँच और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलिलिया से। और आगे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को रोकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं दिलीप जी की, और गाने के बोल देते हैं, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। सुनाना है आपको कमरान भाई, अहमद भाई और सभी दोस्तों को। तो चलिए बिल्कुल सुनाइए और इंजॉय करते हैं आपके गाने के साथ हम सभी रेडियो रामछिम 94.4 FM पे।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेम झीम 94.4 FM पे अभी सुन रहे थे हमें सभी। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो आगे बढ़े मैसेज देखा जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि दिलीप राम भाई का पसंद मुझे बहुत पसंद है। और इस मैसेज को करते हैं शगीर अंसारी जी, बिल्कुल कमल के गाने के फरमाइश किए थे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू, मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और मन्नतें भी मांग रखी हैं, बस पूरा होने का इंतज़ार है। बिल्कुल पूरा होगा। और इस मैसेज को करती हैं शबीना। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा, हेलो हाय सुनो भैया जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड इवनिंग, हमें गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कृष्ण मोहन जी, मिलते वक्त नाइट नहीं होता है, इवनिंग होता है। और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि कमरान रसीद पकड़ी सुल्तान, सोनू भाई को मेरा सलाम, कैसे हैं? और आज तो खूब पूरी खाए होंगे, किस बात की? लिखे हुए शफाक की शादी था शंग, बाबुल की दुआएं लेती जा। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। और आप लोगों को जानकारी है, आप लोग गए होंगे तो आप लोग तो खूब खाए होंगे, तो बताइए कितना खाए। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है, हेलो सर नमस्कार, राधे राधे जी। सर जी मुझे गाना सुनना है, जीता था जिसके लिए, अनामिका चौधरी प्रेम नगर बस्त्रा राजा लालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने की दुआ मांगी है, मैंने तो सिर्फ हर दुआ में तेरी ही वफा मांगी है, ये दुनिया लाख जले हमारी मोहब्बत से, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुझे मोहब्बत करने की सजा मांगी है। सोनो भाई शुक्रिया आपको, और सुन लिए आपके साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और कहते हैं कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अगली गाने की फरमाइश, चलिए कमल के गाने की फरमाइश भी पहुंचा हुआ है। कहती हैं कि मेरा भी सॉन्ग जल्दी सुना दीजिए, तो जल्दी ही सुना देते हैं। और लिखी हुई कि मेरी सिस्टर हैं और फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ, जो अपनी दुआओं को सॉन्ग के माध्यम से देना चाहती हैं। सॉन्ग है, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो, प्लीज़ सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू हम भी हैं भाई जुड़े हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि पांडे सरिया गोपालगंज से, सोनू भाई क्या हाल चाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है, अपना बताएं कि आप कैसे हैं और स्वागत है आपका। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा संग बजेगा कि नहीं सर जी। बिल्कुल बजेगा और यदि आपकी फरमाइश होती है तो। अगली मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दिल में मोहब्बत हो तो दिल भर सुहाना लगता है, हो हाथों में हाथ तो सफ़र सुहाना लगता है, फुर्सत के कुछ पल चुरा कर जिंदगी से जब वो घर में रहते हैं तो घर सुहाना लगता है। सुनो भाई आपको तो निमंत्रण मिला होगा पर कमरान भाई पूरी खाने गए थे यही लगता है, बिल्कुल गए होंगे और इसीलिए तो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक बताया नहीं कि कितना खाए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मेरा भी मैसेज देखिए और हमारा भी फरमाइश बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा और इस मैसेज को करती हैं, लिखती हैं कि हेलो भैया गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, एकदम बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। साजिदा अंसारी मीरगंज से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर मैं भी आ चुकी हूं और मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रोने की वजह ना थी ना हंसने की बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपाना था। बड़रिया थाना क्षेत्र भालापुर से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे, आगे मैसेज पहुंचा, थैंक यू दिल से सॉन्ग सुनाने के लिए और मेरे तरफ से हैप्पी पार्टी भी है आप सब के लिए, अब भी आप लोग आ सकते हैं मेरे घर, एड्रेस है दुलिया रेलवे ढाला। बिल्कुल जो जाने योग्य होंगे बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, जो जाने योग्य होंगे वो भी अस्कत के मारे नहीं पहुंच पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाह काफ़ी प्यारा सॉन्ग रोशनी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने के फरमाइश हम सगीर अंसारी जी की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं शगीर अंसारी जी की फरमाइश, और यहाँ पे अगली मिसेस अगले गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, और इस गाने के फरमाइश करते हैं, और बहुत दिन के बाद गाने के फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं कमरान रशीद जी। इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, बाबुल की दुआएँ लेती जा। तो चलिए, काफ़ी प्यारा गाना है, आपके गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुनने आप सब। और छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और समय आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़े जाए। और आगे कई मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि इसके बाद मेरा बजा दीजिए, तो बिल्कुल आपके भी गाने बजाएंगे। और थोड़ा सा समझे, आपसे भी पहले कई लोग मैसेज किए हैं जो इंतज़ार में अपने गाने को लेकर बैठे हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश करते हैं दीपक एंड जेलर जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो चलिए, अभी आपकी दर्द ख़त्म नहीं हुई, लगता है इस लगन भर रहेगा और अगले साल ख़त्म कर दीजिएगा पक्का, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश, और इस गाने के फरमाइश करने वाले दीपक अंजेलर जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है सुनो भैया, आपके गोपालगंज में बारिश आ रही है, सोचा कि पता कर लूं। तो बिल्कुल बारिश तो हो रही है अभी। और आगे मैसेज, इस मैसेज को करते हैं लक्की जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि इसके बाद मेरा, और इस मैसेज को पहुंचाई है सरदार अंसारी मिर्गन से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

4 FM सुनने आप सब, और बिल्कुल यदि ढूंढा जाए तो मिल ही जाएगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सोनम बाबू, सोनम बाबू हम भी हैं भाई, जुड़े हैं और हमें भी एक सॉन्ग सुनना है। फिल्म है मासुका कुमार शानू का, सॉन्ग है दीवाना दिल जुड़, और डेडिकेट मैडम जी को पहले, और शफाक रोशनी हिना हाजरा शबीना निशा सबीता खुशी और ब्यूटी दिलीप भाई और बाकी सोनम बाबू, इसलिए हम भी हैं आप लोग के साथ ही हैं। और आगे मिसेज कहते हैं कि सोनम बाबू दीपक भाई को राय दे दे कि अब ये गीत छोड़ दे, गाये तू ना मिलबू तो हम योगी बन जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज है तो मैसेज देख लिया जाए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड नाइट आपको सर और सारे रेडियो दोस्तों को, और इस मैसेज को करती है निशा पांडे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि थैंक यू सो मच भैया सॉन्ग प्ले करने के लिए, सजदान साहिब मीरगंज से आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज हमारे पास कई पहुँचाए हुए हैं जो हम शामिल नहीं कर पाएंगे, और यह मैसेज पहले भी पहुंचा हुआ था, सनोज जी आप अच्छे लाइन को भेजें, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस लाइन को शामिल नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपसे कह दें कि मजाक करने की भी हद होती है, हम रेडियो पर बैठे हुए हैं और आपस में हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों मजाक कर ले। हमारे साथ कई लोग हैं जिनको कुछ बुरा भी लग जाएगा, हम दोनों तो मजाक कर लेंगे लेकिन अगला का भी ध्यान रखना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि सर मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं और इस मैसेज को करते हैं गाने के फरमाइश करती हैं अनामिका चौधरी, और गाने की फरमाइश करती हैं जीता था जिसके लिए मरता था। तो इन्हीं की फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और देखेंगे कि समय हमारे पास बहुत कम है और गाने थोड़े लंबे हैं, तो पूरे गाने सुनते सुनते कार्यक्रम की समाप्ति से कुछ समय आगे भी निकल जाएंगे, तो आगे मैसेज और गाने की फरमाइश प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। अंतिम गाना यही रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी नहीं बनाया और किसी और का भी ना होने दिया। शामिल कीजिए। बिल्कुल हमने शामिल कर दिए हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। तो आप सब अंतिम गाने सुनते रहें, इंजॉय करते हैं रेडियो रमछिम 90.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुने दिल से। मिलते हैं कल। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ

0: विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
2: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
1: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Vikasit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Ștefan cel Mare și Sfânt in Chișinău. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In the United Kingdom, newly elected leader of the Labour Party, Andy Burnham, has took charge as country's new Prime Minister. King Charles III invited the 56-year-old Mayor of Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. In his inaugural speech at 10 Downing Street, Mr. Burnham said he will make politics more about problem solving. Supreme Court today directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India Surya Kant directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submit its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 to 3 days. In Jammu and Kashmir, 4 more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least 7 people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Pooch districts. Chief Minister Omar Abdullah has announced an ex gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Pooch districts. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई च्वाइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते मैडम।
4: नमस्ते।
5: जी गाना सुनना है, टास्क पर्सन से बोल रहा हूँ, टास्क पर्सन से संदीप कुमार सर में।
4: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: मैडम मौसम भी सुहाना हुआ है, जाम भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, आवाज थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी काउंटेड काम चला रहे
4: हैं।
5: उमर जैसा दिन हुआ है। मैडम गाना सुना है?
4: बता दीजिए कौन सा।
5: हिंदी गाना कोई अपने पसंद से सुना दीजिए।
4: अच्छा चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैडम।
1: जी नमस्ते
0: मैडम, गाना सुनना है।
1: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: तो गाना है एक परिवार का, मर गई दीवाना गई मैयर के, मर गई दीवाना मैयर।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ, मेरा भाई है, अरविंद है, और संदेश है, और जयराम है।
1: तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
7: भारती मैम नमस्कार।
6: नमस्कार,
7: मैं सुधीर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से। मैम
6: हाँ जी, कैसे हैं आप?
7: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
7: और आपके रेडियो रिमझिम के पूरे टीम सब कैसे हैं?
6: सब कोई अच्छे हैं
7: जी। बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी मैम?
6: नहीं।
7: और इस पर ट्राई किया तो जो बता रहा, पुरानी भोजपुरी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम।
6: कौन सा?
7: गंगा किनारे मोरा गाँव का, आशा भोसले की आवाज में है, गीत के बोल है भीगे रे चुनरी भीगे बदन के बोल रहे हैं।
6: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी
7: जी मैम? सबसे पहले आपको रेडियो के जितने भी श्रोतागण हैं देश विदेशों में, सबको सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हमारे साथी सर हैं, मदन कोल हैं, राजकुमारी हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, भोलाना कोल हैं, कृष्ण कोल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ
6: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 91.4 FM।
7: ओके मैम।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी आपको भी स्वागत है मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम का रिकॉर्डिंग करने का। और मैं बुधवार को क्यों नहीं हुआ रिकॉर्डिंग?
1: छुट्टी पे थे हम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए।
0: अच्छा, तो चलिए, ये तो भाई किसा बस की बात है, कभी सा तबीयत खराब हो जाए, चलिए कोई बात नहीं है, एक दिन छुट्टी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। सपनों से प्यारा घर दुआ के लिए कहा है ना, हमारा घर दुआ सपनों से प्यारा कैसा कैसा गाना है वो, है ना। हाँ, एक घर संतार बोलते
1: है,
0: वही गाना सुनवाइएगा आज।
1: अच्छा,
0: तो और कैसा दिन कट रहा है मैडम?
1: सब सही कट रहा है,
0: ऊपर वाले के मस्जिद से ना।
1: हाँ,
0: एक बहाना अच्छा है यार, ऊपर वाले के मस्जिद है ना, अच्छा बहाना है, जो कुछ अपने से ना हो ना तो ऊपर वाले घर पे डाल दो।
1: नहीं, आदमी तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन वो साथ ना हो तो कहाँ कुछ होने वाला है।
0: तो वैसे तो जिंदगी में चढ़ाव उतार होता ही है, घबराना भी नहीं चाहिए, है ना, अपना जो योगदान पूरा देश देते रहना चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है।
1: ये तो सही बात है।
0: तो ऐसा ही संघर्ष कीजिए मैडम, एक दिन फल मीठा होगा। हाँ, वो कहा एक कहावत और है ना, मेहंदी भी जाती है ना, रंग हीना लाती है मेहंदी भी जाने के बाद। जब इतना है मेहंदी तभी तो कलर आता है, वही बात है। तो हमको ये जो है मैडम आज होते थे कि घर द्वार फिल्म का गाना वो सुना जाए, है ना। ये घर द्वार का बहुत कम ही पैसा है रेडियो स्टेशन पे, लोग नया तो नया, पुराना तो बहुत कम ही लोग नाम लेते हैं। हाँ, चलिए तो आपको आज तो चलिए मेरे ठीक है, सब रख रहे हैं गाना दीजिएगा।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: ओके, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: बातचीत हो रही है मैडम जी?
5: हाँ।
6: और मुझे अच्छा दिन ना हुआ?
5: नहीं,
6: बस बता सकता
5: बुधवार को नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग।
6: चलाती है दूसरा मैडम चलाती है?
5: हाँ हाँ, कभी कभी कोई और भी रिकॉर्ड करती है, है।
6: और मैडम जी और अपना
5: अच्छा है? हाँ मेरा अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: जी अच्छा।
5: नाश्ता हो गया आपका?
6: जी मैडम जी।
5: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: तो मेरा गाना मैं सुनाती है नई नाम से, कभी छोड़ देती है कभी सुनाती है।
5: नहीं नहीं, हम छुट्टी में थे ना इसीलिए नहीं चला।
6: सुना दीजिएगा रब ने बनाया इसीलिए।
5: एक बार और क्लियर कर दीजिए।
6: ये रब ने बनाया किसी लिए।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: ये मैडम आपको जितना रेडियो है शब्दों सुनता है
5: किसी के साथ। तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ये मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में। हेलो
1: जी, मेरे नाम बड़ा प्रधानपति से।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है, आपने बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज तो जुम्मा है, बोले फिरको वाली सुना दीजिएगा, आज जुम्मा है।
0: अच्छा, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंगीन 90.4 FM।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। हेलो।
6: हेलो।
5: हाँ बोलिए,
6: क्या हाल है?
5: मेरा तो ठीक, आप अपना बताइए। हाँ, खाना हो गया आपका? हो गया। नाम बता दीजिए अपना।
6: संध्या कुमारी।
5: अच्छा, तो हाँ हाँ, गाना किसी को सुनाना भैया?
6: आप रेडियो रंजन सभी को।
5: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो 90.4 एफएम
1: जी, गाना सुनना था।
0: नाम बता दीजिए।
1: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं, जिला भागलपुर तीर्थ ग्राम प्रसन्ना।
0: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: मेजर साहब का सुना दीजिए।
0: अच्छा,
1: अकेली ना बजा रही जाया।
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: पवन को सुनाना।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
5: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी धन्यवाद इस शो में।
5: क्या हाल चाल है
6: मैम? अच्छे हैं मैम। आज आप बताइए हम कौन बोल रहे हैं, आज हम नहीं बताएंगे। हेलो,
5: मैं तो पूरा कंफ्यूज हूँ।
6: जी मैम कोई बात नहीं, सफेद अली बोल रहे हैं गोपालगंज से।
5: अच्छा हाँ,
6: आपका सुनकर इंतजार रहता है हमें बहुत।
5: अच्छा जी, चलिए ये तो अच्छा है कि सुनते हैं आप।
6: मैम रेडियो में एक बात है कि रेडियो सुनते हैं तो अपना सब गम भूल जाते हैं।
5: ये तो है, सबकी फरमाइश सुनना अच्छा लगता है सब,
6: लेकिन जब तक वो चलता है तब तक बहुत अच्छा लगता है।
5: क्योंकि मानिए तो बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, सब कोई एक साथ जुड़ते हैं, सबको एक दूसरे से बातें करना लगता है।
6: हाँ मैम, इसलिए सभी लोगों को, सभी आरजी को धन्यवाद है मेरे तरफ से।
5: जी जी, और बताइए सब क्या हो रहा है?
6: नहीं, दुकान पे है अपना, जुड़े हैं।
5: चाहिए कौन सा गाना सुनना है?
6: ये मुझे गाना सुनना है, गाना का नाम है इश्क की गली, राहत फतेह अली खान का।
5: जी,
6: तो कहेंगे यही कि आप फुल सॉन्ग सुनाइएगा।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: सभी सुनने वालों को, सबसे पहले तो आपको, सोनी मैम को, सोनू सर को।
5: जी जी,
6: और ये गाना बहुत प्यारा है मैम।
5: जी बहुत प्यारा है, हम भी सुने हैं।
6: जी मैम, तो फुल सुनाइएगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, और जल्दी जल्दी बताइए कब तक बजेगा, मतलब आज या कल
5: करेंगे बजाने को, नहीं तो कल तो बज जाएगा।
6: मैम तो फर्स्ट में लगाए तो कभी भी फर्स्ट में नहीं पाता है, फर्स्ट में ना जाइए ना कभी।
5: अच्छा, पूरी कोशिश करते हैं।
6: कोशिश करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करके आप मेरा करेंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है मैम।
5: जी जी
6: जी मैम, इंतजार करेंगे आपके। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको सर को धन्यवाद, इसको हमेशा चलाइएगा मैम।
5: जी जी बिल्कुल, आपको शो अच्छा लगा इसलिए आपको धन्यवाद।
6: जी मैम, सोनी मैम नहीं आ रही है क्या?
5: आती है,
6: इस शो में नहीं आ रही है
5: वो, योर वॉइस योर चॉइस का शो कर रही है ना अभी, इसीलिए। और ये
6: हम तो कोशिश नहीं की उस शो में आने का, भोजपुरी एक्सप्रेस में
5: आप
6: आधे घंटे के लिए भी आइएगा, कोशिश कीजिएगा आने का, हमको बहुत अच्छा लगेगा, दो आदमी चलाएंगे शो तो।
5: इसके लिए सर बोलेंगे तभी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के अनुसार ही होता है।
6: जी मैम ये भी आ सही है। चलिए धन्यवाद, और भी लोग हैं, हम जा रहे हैं और लोग जुड़े।
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: बाय
5: बाय बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्रामदेव जिला
0: जी। क्या हालचाल है आपका?
1: अच्छा,
0: आपकी आवाज कटकट की आ रही है।
1: अच्छा है मैम, अपना बताइए।
0: हम भी ठीक हैं।
1: और मौसम क्या हाल चाल है?
0: मौसम तो अभी फिलहाल ठीक है, ठंडा है।
1: बारिश वगैरह आ रहा है कि नहीं उधर?
0: बारिश तो आता है दिन में या फिर रात में, एक बार आ ही जाता है।
1: हमारे तरफ भी बारिश भेजिए, हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रहा।
0: अच्छा, बिल्कुल जाएगा।
1: मुझे गाना सुना दीजिए। एक गाना मैं फिल्म में तारों की रात भर तेरी दिख रही रहता है।
0: एक बार और बोल दीजिए।
1: मैं फिल्म में सितारों की रात भर तेरा दिख रही रहता है।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: आपके लिए और पूरे रिमझिम परिवार को, जितने भी रिमझिम श्रोता है सभी के लिए।
0: जी जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: ये भारती जी ना? क्या हाल बा?
5: हाल तो ठीक बा, अपन बताएं।
6: बस ठीक है बा, आज बहुत परेशान हो गई हूँ।
5: क्या है?
6: फोन लगाओ तो लगाओ।
5: अच्छा, फोन ना लगा
6: ना, आज बहुत बिजी हम कहने की बुझाता है सोनी जी आई है क्या, इसीलिए बिजी चल रहा
5: है। नहीं,
6: वो मनोरमा मैम को कब हुआ था रिकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं था।
5: वो सोमवार रिकॉर्ड की थी।
6: पिछले सोमवार को?
5: पिछले सोमवार को
6: हमें पता नहीं, हम भी तो किए थे, तो आपसे बात हुआ था ना?
5: इस सोमवार को नहीं, ये पिछले सोमवार को हुआ था।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगला सोमवार को। इस सोमवार को नहीं, तो वही मैं सुना, कल सुना तो मैं

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: हम छावे राजन मार्ग से रामाजी प्रसाद।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल बरा और?
1: हाल चाल ठीक बार, आप बड़ी पसंद होता।
0: अच्छा, गर्मी होता है। बता दी
1: बना के क्यों बिगाड़े नसीबा ऊपर वाले।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों सुना होंगे?
1: बाजार में समोसा वाला पप्पू प्रसाद, सूजी वाला राम प्रसाद, किराना वाला हरेंद्र प्रसाद, हम रहुआ जितना रिमझिम सुनता सब कोई।
0: जी जी, चलिए फिर ठीक बार और गाना प्ले करते नहीं सुनत नहीं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. जब फोन डिंग डिंग बजती है तो कहते हैं हेलो।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी मैम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
3: क्या हाल है?
2: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
3: मेरा भी ठीक है। हाँ, सब बताइए। नाश्ता हो गया?
2: जी मेरा नाश्ता हो गया। आपका हो गया?
3: हाँ मेरा भी हो गया है।
2: और सब सुनाइए, और सब ठीक है ना?
3: हाँ हाँ, बताइए।
2: जी जी, हमारा भी ठीक है। तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
3: गाना सुनेंगे, अभी जी बता रहे हैं। वो गाना है ना, मेरा प्रिया बड़ा रंगीला। यही वाला सॉन्ग बजा दीजिएगा।
2: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
3: सबसे पहले मेरी भाभी रुकैया को, और आपको, सोनी भैया को, दिव्या मैम को, और मेरी बहन लोग है, और सुनने वाली सभी दोस्तों को सुनवाना चाह रही हूँ।
2: जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर आपका गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।
3: थैंक यू मैम।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम, कैसे हैं आप लोग?
1: नमस्कार, हम सभी तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं, आप लोग से दुआ का आशीर्वाद से।
1: नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है, अभी तो अपनी दुकान पे हूँ मैं।
1: अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया है। बता दीजिए कौन कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: हाँ जी, गिटर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: गाने के बोल
0: दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त होते हैं उन सभी लोगों का साथ में सुनना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार
2: जी मैम, गाना सुनना था
3: जी। नाम बता दीजिए अपना।
2: जी मेरा नाम पप्पू कुमार शाह है, पड़ा रहा बड़हरिया के
3: जी।
2: कैसी है मैम?
3: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?

0: मैम हम भी अच्छे हैं। आप नई आई है क्या मैम?
1: जी मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: तो भारती में बोल रही हूँ, हमसे दूसरा कोई आवाज आ रहा है
1: नहीं।
0: तो गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: प्रेम रतन धन पायो।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: अब रेडियो रेंजिंग जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी के लिए, अब आप भी सुनेंगे।
1: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 91.4 FM में।
1: गुड मॉर्निंग भारती मैम।
0: गुड मॉर्निंग
1: मैम, बहुत ट्राई कर रहे तब बाद में फोन लगी हमारी।
0: अच्छा
1: भारती मैम बोल रही ना?
0: हाँ हाँ।
1: तो मैम क्या हो रहा है?
0: कुछ भी तो नहीं, बस कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है
1: जी। मैम क्यों नहीं लगता? बहुत ट्राई करने के बाद आधा घंटा से ट्राई कर रहा हूँ मैं।
0: तो बहुत कॉल बिजी भी तो जा रहा है।
1: हाँ बहुत बिजी बिजी बिजी हर समय बता रहा है। मैम एक तो गाना सुनना था
0: जी, बता दीजिए कौन सा।
1: प्यार झुकता ही कि नहीं कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, क्योंकि हमारी वाइफ का चॉइस है कि प्यार झुकता नहीं का सॉन्ग सुनना है।
0: अच्छा प्यार झुकता नहीं मूवी है?
1: जी जी जी, मूवी का नाम है प्यार झुकता नहीं, उसका। अच्छा। कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: अच्छा
1: जी
0: चलिए, और सॉन्ग किसी को सुनाना है?
1: सॉन्ग तो सबसे पहले अपनी वाइफ को सुनाना है और अपने नाती पोता बेटा बेटी दामाद बहू सबको सुनाना है।
0: अच्छा चलिए ठीक है, अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मेरा नाम शंकर गुप्ता है, मैं गया जी से बोल रहा हूँ। मैं इसके पहले भी कॉल किए थे लेकिन आपने गाना बजाया, हमें बहुत खुशी हुई।
0: जी जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रही हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8009294911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।